सदाक्षी के साथ हैप्पीनेस एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी पर, और इस हैप्पीनेस के साथ आपके साथ हमारी जबरदस्त बातों का साथ जारी है। मॉर्निंग्स ऐसी होती हैं, मुझे लगता है कि अगर एक बार बातों का सिलसिला शुरू हो जाए तो फिर रुकता नहीं है। एक बार मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, और फिर हमारी बातें हुई पूरे एक घंटे। उसके बाद हम लोगों ने जब टाइम देखा तो हम लोग ने कहा कि यार ये कौन सा वक्त था बात करने का, यार शाम को बात किया करो। दोस्तों का साथ कुछ ऐसा ही होता है, या हमारे जो अपने हैं हमारे पेरेंट्स के साथ भी ले लीजिए, बातें शुरू होती हैं फिर एक घंटा कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। आपके साथ भी ये वक्त कैसे कैसे बीतता जा रहा है पता नहीं चल रहा है। वेल, हमारा आधा शो तो निकल चुका है, लेकिन आधे शो में भी हमारी आपकी बहुत सारी बातें बची भी हैं भाई, जो हम आपसे करेंगे इस अगले ट्रैक के उस पार। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, आपके साथ सताक्षी है।

तो वेलकम बैक इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। और इंडिया ने यूपीआई पेमेंट्स पर लगा दिया है 0.4% का टैक्स। अब ये टैक्स तो कहा जा रहा है कि मर्चेंट्स पे लगेगा और मर्चेंट्स को गवर्नमेंट को पैसे देने होंगे, टैक्स देना होगा, बट इनडायरेक्टली देखा जाए तो भैया मर्चेंट कस्टमर से ही वसूलता है, एक रुपए की चीज चार रुपए में देकर, है ना। तो इंडिया की जो जनता है, जो सिटीजन्स हैं, भाई इनडायरेक्टली टैक्स उन पर ही आने वाला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि भारत में सबकी आदत हो गई है ना, मोदी जी ने लगवा दिए यूपीआई पेमेंट्स। अब लोग पेपर मनी रखना तो भूल ही गए हैं, यूपीआई पेमेंट्स पर पूरी तरह से डिपेंड है और अब यूपीआई पेमेंट धीरे धीरे उन पर भारी पड़ना शुरू होगा। तो मुझे लगता है पेपर मनी का जमाना धीरे धीरे फिर से वापस आना भी शुरू होगा। क्या देखते हैं, अभी फिलहाल एक ट्रैक के साथ आगे चलते हैं, इंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रह्मवाणी पर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

लाइफ में हम कुछ लोगों के इतना क्लोज हो जाते हैं, उनसे इतना घुलमिल जाते हैं कि वो सही गलत जो भी कहे ना, हमें वो सही ही लगता है। हमसे कई लोग कई बार कहते भी हैं कि यार ये बंदा ना ठीक नहीं है, लेकिन हम भरोसा नहीं करते क्योंकि हमारा दिल जो है वो उस बंदे पर, उस इंसान पर, उनकी कहीं बात से कहीं ज्यादा भरोसा करता है। ऐसा खासकर टीनेजर्स के साथ होता है जो नए नए दोस्त बनाना सीखते हैं। बच्चे, कॉलेज लेवल तक के बच्चे जो होते हैं वो दोस्ती में इतना पागल रहते हैं कि दोस्त को अपना परिवार का समझ के और फैमिली मेंबर्स को अपना दुश्मन समझ लेते हैं वो कई बार। तो भाई इस मामले में बच्चों से तो हम नहीं उम्मीद कुछ कर सकते, पेरेंट्स से जरूरी रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों की दोस्ती पर शुरुआत से फोकस रखिए, उन्हें कैसे दोस्त बनाने हैं ये उन्हें बचपन से सिखाइए, है ना। क्योंकि आप शुरुआत में उनके संगत पर, उनकी दोस्ती पर ध्यान नहीं देते, उस पर फोकस नहीं करते, और बाद में जाकर जब बच्चा जो है ऐसे दोस्त बनाता है जिनके खिलाफ आप होते हैं और बच्चा फिर आपको अपने खिलाफ समझता है, तब लगता है कि यार इस संगत पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। सो बहुत जरूरी है कॉन्सेंट्रेट करना अपने बच्चों पर, उनकी दोस्ती पर, उनकी संगत पर। आइए आगे बढ़ते हैं इसी ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिज वाणी, आप सताक्षी के साथ सुन रहे हैं इट हैपेंस।

वेलकम बैक, इट हैपेंस इन रैप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। यू नो, हम अक्सर सोचते हैं कि एक बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़ा काम करना पड़ेगा, भला छोटे छोटे चेंजेस से भी कोई चेंज आता है। पर सच तो ये है कि एक छोटी सी स्माइल या आपका किया गया एक छोटा सा एफर्ट किसी के पूरे दिन या उसकी सोच को पॉजिटिव कर सकता है। मेरे मोहल्ले में एक अंकल थे जो हर रोज अपने गार्डन से फूल तोड़ के वॉचमैन को देते थे, सिर्फ उस वॉचमैन की स्माइल देखने के लिए। उनका कोई स्वार्थ नहीं था इसमें, लेकिन एक एफर्ट था, बहुत ही छोटा सा एफर्ट, जिसने वो वॉचमैन का पूरा दिन बना दिया, है ना। या रोज बना देते थे, वो जब भी उनसे मिलते थे वो फ्लावर देते थे, वॉचमैन के चेहरे पर हंसी आ जाती थी और मैं ये रोज देखती थी। तो अपने एफर्ट्स को कभी भी छोटा मत समझिए और सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी, आपके साथ सताक्षी है।

ये वक्त हो गया है इट हैपेंस को यहीं पर वाइंड अप करने का। जी हाँ, हम आपसे मिले थे आज की सुबह के आगाज के लिए, लेकिन अब आप जा रहे हैं अपने दिन के आगे के आगाज के लिए। तो भाई, अब मुझे तो इजाजत लेनी होगी ना, ताकि आप अपने दिन की बेहतर और मजेदार शुरुआत कर पाए। तो चलिए, मैं अब कल मिलने के वादे के साथ आज इस सफर से इजाजत लेती हूँ। आप मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करते रहिए। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए हो जी तुहाडे अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बरसाणी 101.1 ते जीआरजी संदेश शोलक दे नाल तुसी बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा सोहणा जिहा वेला शुरू हो चुका है जी, ते इन्हां गल्लां नूं सिलगाउणा है पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसी की गाणा है, तुसी जुड़ना साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ा शुरू कर दो। रेडियो बरसाणी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जी, bersani@bersani.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसी ओ अपनाओ, पर साडे नाल गल्लां बातां जरूर करो, क्योंकि सानूं चंगा लगदा तुहाडे नाल गल्लां बातां करनियां। तां चको तुसी अपना फोन ते साडे नाल गल्लां बातां करो, है ना। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। ते मैं तां आउनी आं, बस हुणे आउनी आं वापिस। उहनां समां तुसी सुणे जी गीतां नूं इंजॉय भी करो।

वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101 एम ते जी आप चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड की चकाचौंध तक सीमित नहीं रहा, पिछले कुछ सालों विच खेतरी भाषावां विच बनिया कई फिल्मा ने अंतरराष्ट्रीय मंचा ते भारत का नाम रोशन किया है। BFTA कांस वेनिस ते ऑस्कर वर्गे बहुत सारे अवार्ड फंक्शन विच भारतीय फिल्मा ने अपनी स्टोरी टैलिंग संवेदनशीलता नाल दुनिया नूं प्रभावित किया है। तो मैं सोचा कि क्यों ना तुहानूं उन्हां फिल्मां बारे दसा जिन्होंने विदेश विच खूब वाहवाही वटोरी हैगी है। शायद बहुतियां बारे तो तुहानूं पता होना, बहुतियां बारे नहीं पता होना क्योंकि अदर लैंग्वेज दे विच हैगियां है। तो अदर लैंग्वेज जिहड़ी आउंदी हैगी है तो उस बारे सानूं शॉर्ट मूवीज बारे ज्यादा पता नहीं हुंदा। तो चलो मैं तुहानूं दस्सदी हां, जे तुहानूं समझ आउंदी होई तां जरूर देखियो क्योंकि फिल्मां बहुत ज्यादा वधिया है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हा? लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 ते जी आर जे संदेश चालक दे नाल बने हुए हुणे ना फिल्मां दे विचों जिहड़ियां पूरी दुनिया दे विच छाईयां हुईयां ने तां इह जिहड़ी लिस्ट मैं फरोल रही हां तां इस विच सब तों पहला नाम जिहड़ा आउंदा है उह हैगा बूंग। जी हां, इह लक्ष्मी प्रिया देवी दे निर्देशन विच बनी मणिपुरी फिल्म हैगी है बूंगे फिल्म का नाम। तो बूंग ने ना हाल ही विच बाफ्टा अवार्ड 2026 बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीत के ना इतिहास रच दिता है। फरहान अख्तर ते रितेश सिद्धवानी दे एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म विच एक छोटे मुंडे की कहानी है जो अपने पिता की तलाश विच निकलता है। फिल्म मणिपुर विच जाति तनाव ते सीमा दियां चुनौतियां नूं एक बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाउंदी हैगी है जो बहुत वधिया लगती है क्योंकि जेड़ी चीज बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाई जांदी है कि ना वो नो डाउट कमाल दी हुंदी है।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। I'm so confused.
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

हाँ जी तो वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी वंसन वाले ते जी आर चे संदेश अलग दिन बने हुए। अगला नाम इस लिस्ट विच जिहड़ा हैगा है वह हैगा जी होमबॉर्न दा। नीरज गायवान वालों निर्देशित फिल्म ईशान खट्टर विशाल जेठवा जानवी कपूर दी है की है। तीनों इस लीड फिल्म दे विच लीड रोल दे विच ते मार्टिन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है इसे। ये ना बचपन के दो दोस्तां जिन्हां दे विचों एक मुस्लिम हैगा ते एक दलित समुदाय दे नाल हैगा है तां उन्हां दी दोस्ती साहत ते जाति राजनीति की कहानी हैगी है। ये भारत की अधिकारित एंट्री सीगी 88वें ऑस्कर दे लई बेस्ट इंटरनेशनल फीचर दे विच शॉर्टलिस्ट हुई पर नॉमीनेशन नहीं मिलिया। ये धर्मा प्रोडक्शन वालों बनाई गई है। 26 सितंबर नू रिलीज हुई सी।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: अंजीत एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाने वन जर वन एम ते जे आर जे संदेश शौलक दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म जड़ी हैगी है उसका नाम है जी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। पायल कपाड़िया दी फिल्म हैगी है ते फिल्म 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल विच ग्रैंड पिक्स जीती सीगी। कैन फिल्म फेस्टिवल दे विच कानी कुश्रुति अते दिव्या प्रभा इस विच लीड रोल दे विच है ते मुंबई दिया दो नर्सां दी इमोशनल यात्रा दिखाउंदी है कि है। गोल्डन ग्लोब विच दो नॉमिनेशन बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म ते बेस्ट डायरेक्टर ते गोथम अवार्ड्स NYFCCA LA शिकागो आदि तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर अवार्ड जीते ने। बाराक ओबामा ने इस नू 2024 दी टॉप फिल्म चुनिया सीगा।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखियां।

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी वंसर वाने हम ते जी आर चे संदेश चौलक दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे विच। वो फिल्म का नाम है मसान। नीरज गायवान दी जैप्यू फिल्म वाराणसी विच दो कहानियां देवी जिस जो रिचा चड्डा बने से ते दीपक जो विकी कौशल बने से थी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रोमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उथे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्डा ते विकी कौशल ने यादगार एक्टिंग की थी है। विकी कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: सुहाना साहब तो रब सीगा जानू कले कले खाब तो रब सीगा जानू कले कले खाब तो नी मैनू सारा कुछ मिले आ सुहाना साहब तो।
1: जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 ते जी आज चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म है किया All That Breeds। ए नाम सुन के लगता है कि हॉलीवुड मूवी होनी है बट नो नो नो नो नो नो ए हॉलीवुड मूवी बिल्कुल भी नहीं। All That Breeds ए इंडियन मूवी है कि शौनक सेन वालों निर्देशित डॉक्यूमेंट्री हैगी है 2023 ऑस्कर के लिए नॉमीनेट हुई सी। 90 मिनट की यह फिल्म दिल्ली के वजीराबाद विच दो भरावां की कहानी है जो जख्मी काली चिलन बचाते हैं। फिल्म ने कांस विच गोल्डन आई अवार्ड संडांस विच वर्ल्ड सिनेमा ग्रांड जूरी प्राइज समेत 17 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं। इस 2023 ऑस्कर विच बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर नॉमीनेशन मिले है।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

अजी देख फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 FM ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। इस तो बाद अगला जिड़ा नाम है इस लिस्ट विच ओ है जी कोर्ट स्टे कोर्ट स्टेट वर्सेस अनुबा जी कोर्ट ते चैतन्य तामने दी ए एक होर फिल्म कोर्ट ने 2024 दे वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते सी लायन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड ते ओरिजोंटी कैटेगरी विच बेस्ट फिल्म ए फिल्म भारतीय कानून व्यवस्था विच विसंगतियां नु करारा व्यंग हैगा उसते जिस विच एक लोक गायक ते आत्महत्या दे लई उकसाउण दा आरोप लग्या हैगा। इस दे नाल ही होर फिल्म बारे दसनी है ओह हैगी है जी पर्च्ड लीना यादव वालों निर्देशित पर्च्ड पेंटू भारत विच महिलावां दे दमन उते उसते प्रतिरोध दी कहानी हैगी है। इस फिल्म ने दुनिया भर विच इस नूं बहुत पसंद कीता गया। इस फिल्म ने 18 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैगे ने। तनिष्ठा चटर्जी राधिका आपटे ते सुरविन चावला इस फिल्म दे विच लीड रोल दे विच है ने। फिल्म ने पेंडू भारत दी उन महिलावां दी कहानी बयां कीती है जो पितृ सत्ता नाल लड़दे आजादी दी राह तलाशदियां हैगियां ने।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: जी देखो, वेला तो हो चुकिया है थोड़े तो इजाजत लैण दा, पर जाण तो पहला थोड़नू कुछ एक होर फिल्म बारे दसना जरूरी सी, तां मैं सोचा वी दस दिनी आ। तां उस फिल्म दा नाम है जी डिसिपलिन जी है, चैतन्य वलो निर्देशित मराठी फिल्म हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दी दुनिया ते आधारित हैगी है। फिल्म नू वेनिस फिल्म फैसटिवल विच FIPRESCI अवार्ड मिलिया हैगा, ते अल्फोंसो कोरान हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक इस दे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से। फिल्म एक संगीत साधक दी कलात्मक पूर्णता की तलाश से आधुनिक दुनिया नाल टकरा दी कहानी है। बहुत ज्यादा सोहनी है कि यह फिल्म तुसी जरूर देखियो। बाकी मिलते तो असं रहने हों, जुड़ते जरूर या करो तुम सा रेडियो बिस्वानी 107.1 FM साथ फेसबुक पेज है जी, bisswani@bisswani.com साथ ईमेल आई डी है जरिए जेड़ा भी तुम अपना चाहते हो अपना लो, पर सा गलबात जरूर करो है ना। तो बाकी बैता यही कहना है कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करो। सत श्रीकाल।
1: What does this fight mean to you to defend your title tomorrow night again?
2: I'm gonna smash you, boy. Tomorrow night, I'm gonna smash you.

0: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: मैडम, आई एम योर ओनली एडम।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीडा। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: For aap sun rahe hain Radio Briswani.
4: Hi guys, I'm Madhvi for the Meat Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
5: Hi, this is Salman Khan.
6: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
7: Hi, this is Deepika Padukone. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, main hoon Tulsi Kumar. Aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani se.
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
12: Mera naam Dr. Kumar hai. Aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: या चुप रहूं
1: ना
0: दिल में मेरे आज क्या।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

स्वागत है आप सबका। हेलो, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? कैसा फील कर रहे हो? हैप्पी मंडे आप सबको। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा हैप्पी मंडे, लाइक आर यू सीरियस? आर यू रियली सीरियस? वेल आई एम सीरियस बिकॉज मंडे मीन्स मोटिवेशन। एम फॉर मंडे, एम फॉर मोटिवेशन। जो भी आपने सपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए जो दिन आपके सबसे ज्यादा मदद करता है वो मंडे ही है। तो सेलिब्रेट कीजिए क्योंकि आपके सक्सेस को बढ़ावा यही देता है। जी हाँ, आइए प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत। और प्रोग्राम की शुरुआत आपको पता है कैसी होती है? वेल, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हूँ। उसके पीछे रीजन क्या है? वेल, उसके पीछे रीजन ये है कि हमें प्रोग्राम करना है और बहुत ही अच्छे से करना है। हम आपका स्ट्रेस जो है वो भगाना चाहते हैं, हम आपको अच्छा फील कराना चाहते हैं और हम एक वाइब यहाँ पर बनाना चाहते हैं जो हम ही बनाते हैं। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले डीप ब्रेथ एक्सरसाइज करते हैं। हेल्दी रहने की कोशिश होगी सबसे पहले बिकॉज हेल्थ is important, be it psychological, physical or emotional. जी हाँ, तो सबसे पहले क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते अब करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत एक बढ़िया से गाने के साथ, जो है आलिया भट्ट का नया गाना। जी हाँ, और बिना देर किए हम इसे प्ले करेंगे आपके लिए और फिर हम करेंगे आपसे और भी बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा मौसम की तरफ चला जाए। जी हाँ, क्या होगा? वेल ऑफ कोर्स मौसम के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कैसा होगा आज आगे का और कैसा अगले दो दिन का मौसम होने वाला है, वही सब हम आपको बताने वाले। सबसे पहले मैंने कहा था कि गर्मी होने वाली है, तो बीड़ू वही हुआ। 31 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, अगर अभी की बात की जाए तो 27.8 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील भी आपको 27.8 डिग्री सेल्सियस के करीब ही हो रहा है। वहीं अगर बात की जाए रात की, तो 14 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आप देख पाएंगे। नो चांसेस ऑफ बारिश, जैसे मैंने पहले ही कहा था, सूरज एकदम चमचमाता हुआ आपको नजर आने वाला है। वहीं एयर क्वालिटी की बात की जाए तो वो होगी एकदम फेयर, वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जी हाँ, इसी के साथ ट्यूसडे की बात की जाए तो कल भी जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। यहां पर मुझे सूरज जो है वो खिला खिला नजर आ रहा है, बट 60% चांसेस भी मुझे नजर आ रहे हैं, मतलब 60% जो एरिया है ब्रिस्बेन का उसमें बारिश हो सकती है। जी हाँ, वहीं वेडनेसडे की अगर बात की जाए तो अगेन मौसम में गिरावट आप देख पाएंगे तापमान में। 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है वो रहने वाला है मैक्सिमम, और 60% चांसेस अगेन बारिश के होंगे। सो मैंने कहा था ना आपको कि ये एक दो दिन जो है वो आपको गर्मी मिलने वाली है और 30s में मौसम जो है वो पहुंच सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से तापमान में गिरावट आएगी क्योंकि बारिश और बदरा ये मेक श्योर करेंगे कि सितंबर में आपको इतनी गर्मी फील ना हो जितनी की कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। मतलब ये जो बीच बीच में मौसम बढ़ जा रहा है और हमें लग रहा है कि सितंबर में, लाइक अभी तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में ही समर आ गया है, तो स्प्रिंग कहां गया? जी हां, ऑफ कोर्स इट्स लेट स्प्रिंग, सो सितंबर जो है वो आपके लिए ज्यादा गर्मी लेकर आ रहा है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ सुपर एल नीनो। जी हाँ, और ये वही फिनोमिना है जिसने बहुत जगह धमाल मचाया हुआ, कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी, कहीं पर बहुत ज्यादा ठंडी, कहीं पर लिटरली जो है वो बर्फीले तूफान आ रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ सुपर एल नीनो। सो ये सितंबर में जो आपको ज्यादा गर्मी दिख रही है बीच बीच में, ये भी उसी का ही असर है। जी हाँ, इसी के साथ यहां पर आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना मैं आपको सुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आज बात हो गई है, तो अब जरा आपकी फरमाइशों की बात भी हो जाए तो बात बन जाए, क्योंकि ये वीकेंड नहीं है, वीकडेज की शुरुआत हो गई है और वीकडेज का मतलब है इवनिंग वाइब और इवनिंग वाइब का मतलब है आपकी फरमाइशें। मतलब ये वाले प्रोग्राम में आपकी फरमाइशें भी उतना ही खास माहौल बनाती हैं जितने कि हमारे गाने। सो मतलब अगर आप कोई गाना है जो आपको बहुत ही अजीज है वो फरमाइश करना चाहते हो, रेकमेंड करना चाहते हो या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हो, उन्हें स्पेशल फील करवाना चाहते हो, तो आप वो कर सकते हो, हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा बन सकते हो आप अपनी फरमाइश के साथ। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, नंबर है +9182888717001। आई रिपीट, +9182888717001। तो बस फिर जल्दी से फोन उठाइए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश वाया कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप। यहां पर हमारी तरफ से एक और बढ़िया

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ दीप वीर यानी कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को सबसे पहले हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और गाना तो मेरा यही गाने का मन कर रहा है कि बधाइयां जी, बधाइयां बधाइयां, वे वाई वाई वाई, वेल ऑफ कोर्स उनके घर में एक और नन्ही परी ने कदम रख दिया है। जी हाँ, 2 साल बाद फिर से उनके घर में एक नन्ही परी आई है और ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी जी रणवीर और दीपिका का दामन छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज द केस कि उनके घर में एक और प्यारी सी नन्ही सी परी आ गई है। सो दीपिका एंड रणबीर जो है वो फिर से प्राउड पेरेंट बन गए हैं एक और छोटी सी नन्ही सी बेबी गर्ल के। और इसकी अनाउंसमेंट दीपिका पादुकोण ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर की एंड एक पॉ प्रिंट, जी हाँ पॉ प्रिंट नहीं, एक फुटप्रिंट जो है वो वहां पर छपा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था कि ऑफकोर्स उनके घर में एक और छोटी सी सी परी आ गई है, दीपिका एंड रणवीर। जी हाँ, एंड अगेन जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये बहुत ही खुशी की बात है भाई, लिटरली किस्मत वालों को मिलती है घर में लक्ष्मी। जी हाँ, सो इसी के साथ बधाई हो बधाई, और ऐसे ही आपकी जिंदगी में लक्ष्मी का आगमन भी होता रहे और ऐसे ही आपकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा खुशमयी होती रहे। और हम यही दुआ करते हैं कि आपकी जो ये नन्ही सी परी है ये हेल्दी रहे, हैप्पी रहे हमेशा। जी हाँ, और बाय द वे दुआ करने से एक और चीज याद आई मुझे कि उनकी जो बड़ी बेटी है उसका नाम भी दुआ ही रखा है उन्होंने। इमेजिन, आई रियली वंडर क्या नाम रखने वाले हैं वो अपनी छोटी सी नन्ही सी परी का जो अब उनके घर में आई है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि बहुत ही जबरदस्त है।

दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: वाली गाड़ी फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तों वी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड्ड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुणो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 107.1 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ है, कल ही की बात है कि मैं सोशल मीडिया चला रही थी एंड गेस व्हाट, ये सोशल मीडिया चला रही थी मैं रात को। जी हाँ, जब बेसिकली मुझे सो जाना चाहिए तब आपको एक अर्ज होती है फोन चलाने की, रील स्क्रॉल करने की। तो उसी वक्त मैं इस फोन को चला रही थी और मेरे सामने एक रील आती है जो इतनी ज्यादा रिलेटेबल थी कि मुझे लगा कि मुझे तो मेरे लिसनर्स के साथ ये शेयर करनी पड़ेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। जी हाँ, तो वहां पर लिखा हुआ था कि मी चला रही थी मैं रात को। जी हाँ, जब बेसिकली मुझे सो जाना चाहिए तब आपको एक अर्ज होती है फोन चलाने की, रील स्क्रॉल करने की। तो उसी वक्त मैं इस फोन को चला रही थी और मेरे सामने एक रील आती है जो इतनी ज्यादा रिलेटेबल थी कि मुझे लगा कि मुझे तो मेरे लिसनर्स के साथ ये शेयर करनी पड़ेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। जी हाँ, तो वहां पर लिखा हुआ था कि मी एट 2 AM वॉचिंग रील्स आर

इट बैडली. एंड यू नो व्हाट, आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स कि मुझे लगता था कि हाँ मतलब ये मैं ही करती हूँ. बट अब मुझे पता चला कि ये इट्स अ थिंग एवरी वन डज इट. मतलब मुझे लगता था कि लोग अगर रील्स चला रहे हैं तो वो बोलते भी यही थे कि वो रील्स चला रहे हैं, मतलब वो फोन चला रहे हैं. वो मेरी तरह नहीं करते थे कि ओ यू नो व्हाट, आई एम सो एग्जॉस्टेड, आई एम गोना स्लीप, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट, और फिर उसके बाद फोन उठा लेती हूँ मैं, और फिर उसके बाद रील्स चलती रहती है, स्क्रोलिंग चलती रहती है. बेसिकली सबके हिसाब से मैं सो गई हूँ, लेकिन मैं नहीं सोई हूँ क्योंकि मैं अपेरेंटली रील्स चला रही हूँ. और ये रील जब मेरे सामने आई ना, उसी वक्त जिस वक्त की ये रील है, बेसिकली इसमें यही कहा जा रहा है कि मतलब 2 AM, ऑल्दो 2 AM नहीं हो रहे थे इन माय सिचुएशन, इन माय केस, बट द थिंग इज कि सो मेनी पीपल डज इट राइट. एंड या बट मुझे एक चीज और समझ नहीं आई कि इसे रोका कैसे जा सके. जी हाँ, सो एक ही चीज जो है वो मुझे इसका सॉल्यूशन मिला है और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए. अगर आपको भी ये आदत है तो अपना फोन जो है ना, जब आप सोने वाले होते हो, दूर रख दीजिए, कहीं दूर जहां पे वो आपकी जो है रीच से परे हो, मतलब आप पहुंच ही ना सको उसके पास. जी हाँ, अगर आप एक रूम में सो रहे हो तो फोन को दूसरे रूम में रख दो और फिर आराम से सो जाओ, क्योंकि तब अगर आपको सोए सोए फिर से फोन उठाने की अर्ज होगी भी तो भी आप नहीं उठा पाओगे, बिकॉज देयर इज नो वे. आप इतने ज्यादा फुर्तीले हो, आप लेजी नहीं हो कि आप उठ के फोन लेने जाओगे दूसरे रूम में. या आई डोंट बिलीव दैट. सो ऑफ कोर्स आप लोगों को क्या करना है, मेरी तरह, बिकॉज ये रास्ता मैंने अपना लिया है कि अगर मुझे सोना है और मुझे सोना ही है रियल में, जैसे कि मैं सबको कहती हूँ कि ओके मैं एग्जॉस्टेड हूँ, मैं तो सोने जा रही हूँ, तो फिर हमको सोने के लिए अपना फोन जो है वो दूसरे कमरे में छोड़ना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से सो सके. सो या दैट इज द सॉल्यूशन दैट आई हैव कम अप विद. सो आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मुझे क्रेडिट देना भूलिएगा मत. जी हाँ, क्योंकि ये सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है. जी इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी दोस्तों, छुप छुप के चोरी से वही काम कीजिएगा जो सबके सामने नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे बाकी काम करने का क्या ही फायदा है। आप लोग बोलो कि नीवे शर्मा, क्या लॉजिक था इस बात का। वेल वेल वेल, छुप छुप के चोरी से मिठाई खाना कितना अच्छा होता है, राइट राइट। आई नो, हमारे घर में, हर एक घर में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान तो होता ही है जो छुप छुप के चोरी से मिठाई खाता है रात को फ्रिज में से निकाल के। जी हाँ, एंड आई नो वी ऑल हैव दैट पर्सन इन आवर होम। जी हाँ, आप मुझे बताइए आपके घर में ऐसा कौन है। जी, आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा गाना तो कह रहा था किसी और कॉन्टेक्स्ट में, तो लेकिन तुम खाने के कॉन्टेक्स्ट में कहां से ले गई। वेल, आपको तो बताइए, खाने का कॉन्टेक्स्ट कहीं से भी आ जाता है, बिकॉज आई एम नीवे शर्मा एंड आई लव फूड एंड पीरियड। जी हाँ, इससे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, फेस्टिव सीजन आ रहा है और उसका मतलब है कि बहुत सारी मिठाई, बहुत सारा खाना, यमी यमी चीजें, ये सब कुछ आ रहा है और आई कांट वेट फॉर दैट। आई कांट वेट फॉर दैट, लाइक लिटरली आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड। और एक और चीज आने वाली है और वो है गरबा सीजन। आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? बिकॉज आई एम। जी हाँ, चलिए इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आपको सुनाते हैं, और ये गाना जो है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि ये गाना हमारी तरफ से नहीं है, ये गाना है फरमाइशी गीत हमारी बहुत ही प्यारी लिस्नर अमला जी की तरफ से। जी हाँ, गाने का नाम है ये हवा ये रात। वाह वाह वाह, क्या बात है। ऑल्दो हम ऐसे माहौल में, ऐसी वाइब में जाते तो ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट के टाइम पर है, लेकिन यहां पर ये वाइब अभी भी बन जाए तो हमें क्या ही परेशानी होगी। जी हाँ, सो थैंक यू सो मच अमला जी, हमेशा की तरह खूबसूरत गाने फरमाइश करने के लिए और शेयर करने के लिए हमारे साथ। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi, this is Salman Khan.
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
10: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
13: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
15: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
16: जी दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं उस गाने के बारे में जो काफी सुर्खियों में बना हुआ है और इनफैक्ट काफी ट्रेंड भी कर रहा है, जय जय राम। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो भजन लग रहा है। जी हाँ, वेल, मैं इस गाने को आपको पहले ही सुना चुकी हूँ क्योंकि ये गाना हमारे टॉप 10 हॉट 10 के लिस्ट में भी ट्रेंड कर रहा था। नाउ व्हाट मेक्स दिस सॉन्ग सो स्पेशल इज कि इसको गाते वक्त अरिजीत सिंह को 200 टेक लेने पड़े थे। जी हाँ, 200 टेक अरिजीत सिंह को। आप लोग बोलोगे व्हाट, मतलब हमने गाना सुना है और ये बहुत अच्छा लग रहा है और डेफिनेटली ये चैलेंजिंग भी है, पर अरिजीत सिंह को 200 टेक लेने पड़ गए। वेल या दैट्स ट्रू। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अरिजीत सिंह का कहना था कि जब वो इस गाने को गा रहे थे वो इतने ज्यादा इमर्स हो गए थे इस गाने में कि उनको इस गाने को गाते गाते इतनी परफेक्शन से गाने की चाहत हुई कि उनको 200 टेक लेने पड़े। मतलब 200 टेक के बाद उन्हें ऐसा लगा कि अब ये गाना वैसा ही है जैसा मैं इसे गाना चाहता हूँ। जी हाँ, सो अगर आपने गाना नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा, हम भी आपको बीच बीच में उसे सुना रहे हैं। लेकिन अब जरा बात कर लेते हैं रामायणा की, क्योंकि रामायण जो मूवी है वो रिलीज हो रही है 6 नवंबर 2026 को दिवाली वाले वीकेंड पे, क्योंकि ऑफकोर्स राम जी से रिलेटेड मूवी है और दिवाली पे आएगी तो ज्यादा सेंस बनेगी, इसीलिए इसको रिलीज किया जा रहा है तब। जी हाँ, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये दो पार्ट्स में रिलीज हो रही है। सबसे पहले जब इस मूवी को कहा गया था, अनाउंस किया गया था, तब ये ट्रायोलॉजी में कही गई थी, मतलब तीन मूवीज में इसे बांटा गया था, लेकिन फिर उसके बाद इसे दो में बांट दिया गया। जी हाँ, 2017 से ये मूवी बन रही है। कैन यू इमेजिन, 2017 में इसे अनाउंस किया गया था और उसके बाद इसकी स्क्रिप्ट जो है वो प्रिपेयर की गई, कास्टिंग शुरू हुई, सब कुछ हुआ। लिटरली 10 साल लग गए हैं इस मूवी को बनने में, एंड यू कैन ओनली इमेजिन कि क्या करना चाहते हैं यहाँ पर मेकर्स। वेल ऑफकोर्स यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो मेकर्स ने सोचा है कि राम, भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर, आई स्टिल कांट मेक पीस विद दिस फैक्ट कि उनको रणबीर कपूर क्यों लगे राम जी के कैरेक्टर के लिए अच्छे। और वहीं साई पल्लवी भी लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही है सीता माता के कैरेक्टर में। नाउ ये दो कैरेक्टर्स जो हैं, इनके लिए इनकी जो कास्टिंग हुई है ये बिल्कुल पसंद नहीं आ ये लोगों को, और बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को पसंद कर रहे हैं। अदर देन दैट सब कुछ अच्छा है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द हेफ्टी बजट जो कि इस मूवी के लिए असाइन हुआ है, 4,000 करोड़ रुपीज। जी हाँ, आपने सही सुना, 4,000 करोड़ रुपीज। आप लोग बोलोगे कि क्या मतलब, या सो ये दोनों पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आप कह सकते हो कि 2,000 करोड़ की जो है वो एक मूवी बनी है। अब आप लोग बोलोगे कि इतनी ये कमा भी पाएगी, या दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट राइट नाउ, क्या ये मूवी अपना बजट भी पूरा कर पाएगी। आई मीन नो वंडर, द यू नो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, भगवान राम का कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है, दिवाली के टाइम पे इसे रिलीज कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मार्केटिंग भी जो है वो एकदम टॉप की है, VFX के लिए इन्होंने बहुत पैसे खर्चे हैं। बट द थिंग इज कि यहां पर वो जो मेन कास्टिंग है भगवान राम के और सीता माता के रोल के लिए जो इन्होंने लिए हैं, लोगों को वो चीज पसंद नहीं आ रही, एंड दैट इज द रीजन कि काफी सारे लोग जो है वो निराश है। सो ऐसे में अगर ये मूवी हिट होती है तो डेफिनेटली काफी हिट हो सकती है, लेकिन अगर ये नहीं होती है तो ये बहुत बुरे हाल से पिट भी सकती है। नाउ आई एम लिटरली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। क्या लगता है आपको क्या होने वाला है इस मूवी के साथ? लेकिन 2,000 करोड़ फॉर एक मूवी का बजट, That is insane, I would say. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है बॉलीवुड की बेबो और द पू को बर्थडे विश करने का। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। वेल ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पू ऑफ बॉलीवुड, द गीत ऑफ बॉलीवुड एंड द बेबो ऑफ आर हार्ट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट करीना कपूर खान। जी हाँ, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको हमारी तरफ से, रेडियो ब्रिजवानी की तरफ से। और हम इतना ही कहेंगे, ये कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा। जी हाँ, आई डोंट नो, बट आई थिंक सबने अपने अंदर की पू को चैनल जरूर किया होगा। और अगेन गीत वाला लॉजिक भी सही है भाई, ये ज्ञान क्या आप मुफ्त में दे रहे हैं? जी हाँ, क्यों? क्योंकि छुट्टे नहीं है मेरे पास। जी हाँ, अगर आपने जब भी मैट नहीं देखी है, अगर आपने कुछ कुछ होता है नहीं, सॉरी, कभी खुशी कभी गम नहीं देखी है, अगर आपने ऑफकोर्स बजरंगी भाईजान नहीं देखी है, आपने बहुत सारी, मतलब क्या क्या मूवीज का नाम लू मैं, पर करीना कपूर खान हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, खासकर जब वी मेट। आई डोंट थिंक कि कोई भी उस मूवी को टॉप कर सकता है, कोई भी गीत के उस कैरेक्टर को टॉप कर सकता है। यही दुआ करते हैं ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, खुशनुमा रहे, आपकी जो सक्सेस है वो ऐसे ही बढ़ती रहे। और हम एक और चीज कहेंगे, जी हाँ, ऐसे ही आप प्यारे प्यारे नखरे और जेस्चर्स दिखाते रहिए, क्योंकि आपके एक्सप्रेशंस के लिए अलग से एक म्यूजियम होना चाहिए। जी हाँ, थैंक यू सो मच हमें एंटरटेन करने के लिए ओवर द इयर्स। एंड अगेन हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, ये गाना आपके लिए, आप ही की मूवी का, आज की पार्टी।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 04302280009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
4: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 04159526600, 04159526600।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निबा के साथ। दोस्तों, इसी के साथ अब जरा चलते हैं खबरों की दुनिया की तरफ। सबसे पहले सीरिया के अलेपो में हथियार डिपो में कई धमाके, अब तक क्या क्या जानकारी सामने आई है। जी हाँ, सबसे पहले खबर जो है वो अच्छी नहीं है, जो कि सीरिया से आई है। सीरिया के उत्तरी हिस्से में अलेपो प्रांत के अल एस शहर में सोमवार सुबह कई धमाके हुए। सीरियाई सरकारी टेलीविजन अल जजवारिया समेत कई मीडिया संस्थानों ने इन धमाकों की जानकारी दी। जी हां, बीबीसी फारसी ने स्थानीय सूत्रों के हवाले से बताया कि धमाके सीरियाई रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक हथियार डिपो में हुए। घटना के बाद इलाके में स्थिति को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि अब तक धमाकों में किसी के हताहत या घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ स्थानीय सूत्रों और मीडिया रिपोर्टों में इन धमाकों के पीछे इजरायली हवाई हमले की आशंका जताई गई है। हालांकि बीबीसी इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर रहा है। इन रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि निशाना बनाया गया डिपो तुर्की के समर्थन वाले हथियारों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अफगानिस्तान से भी अच्छी खबर नहीं है। जी हाँ, खबरों की बात हो रही है, बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विवाद की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बरसाए बम, तालिबान ने कुछ कहा है। जी हाँ, अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने दावा किया है कि रविवार रात को पाकिस्तानी सेना ने कुनार और पक्तिका प्रांतों में आम लोगों के इलाकों पर बमबारी की है। तालिबान शासन के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने इस हमले की जानकारी देते हुए कहा कि उचित जवाब दिया जाएगा। जबीहुल्ला मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीती रात पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में आम लोगों के इलाकों पर बमबारी की। कुनार में एक महिला और दो पुरुष मारे गए, जबकि दो महिलाएं और दो पुरुष घायल हुए हैं। ये सभी स्थानीय आम नागरिक हैं। पक्तिका में एक घर और एक स्थानीय दुकान पर बमबारी की गई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हम इस हमले और जुल्म की निंदा करते हैं और इसे अपराधों की दोहराई गई घटना मानते हैं। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने अपने देश की अंदरूनी सुरक्षा की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए एक बार फिर से ऐसा अपराध किया है। इंशाअल्लाह अफगान के लोग इस हमले का उचित जवाब देंगे। पाकिस्तान के इस दावे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव और संघर्ष देखने को मिला था।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता।

जी दोस्तों, और इसी के साथ खबरों की बात हो रही है। वहीं अमेरिकी कारोबारियों ने कहा ये तो कोरोना से भी बुरा दौर चल रहा है। जी हां, अमेरिका में गैसोलीन और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का असर अब उद्योगों और कृषि क्षेत्र पर भी दिखाई देने लगा है। अमेरिकी न्यूज आउटलेट CNN की एक रिपोर्ट में अमेरिकी बिजनेस ओनर्स और किसानों से बातचीत के आधार पर बढ़ती ईंधन कीमत के कारण पैदा हो रही चुनौतियों को सामने रखा गया है। रिपोर्ट में इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेज के मासिक सर्वे का हवाला दिया गया है, जिसमें कई अधिकारियों और कारोबारियों ने मौजूदा परिस्थितियों की तुलना कोरोना महामारी के दौर से की है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ कारोबारियों ने मौजूदा हालात को महामारी के दौर से भी अधिक चुनौतीपूर्ण बताया और कहा कि कोरोना का दौर मौजूदा परिस्थितियों की तुलना में बेहतर था। CNN ने काफी कारोबारी के हवाले से कहा कि परिवहन व्यवस्था में बाधा, कंटेनरों की कमी, लाल सागर की घटनाओं के कारण बढ़ी लागत और उर्वरकों की कीमतों में इजाफे ने कारोबार पर दबाव बढ़ा दिया है। CNN के मुताबिक देश के अलग अलग उद्योगों से जुड़े अमेरिकी कारोबारी भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं, जो कि एकदम सही है। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, पूरी दुनिया इस चीज से सफर कर रही है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04-111-27-035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04-111-27-035। रिमेम्बर द नंबर इज 04-111-27-035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
6: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
5: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
6: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
7: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
8: जी हाँ दोस्तों, इसी की तरफ से एक इसी तरह से आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ कुछ और चीजें हैं जो हुई हैं इस दुनिया पर, जिन पर आपकी नजर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे विवाद जो है वो बढ़ने वाला है। देखा जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि World War III शुरू हो गई है। नाउ आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू और एनीथिंग, बट World War III, अगर आपको लगता है World War II और World War I जैसी होगी तो आप यहां पर गलत हो। जी हाँ, ये डिफरेंट होगी, ये कमोडिटीज की वॉर होगी, ये वॉर होगी शिपमेंट्स की, ये वॉर होगी रास्तों की, ट्रेड रास्तों की, जिनकी वजह से बहुत सारा ट्रेड होता है। सो ये इसी तरह की वॉर जो है वो होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि बाब अल मंडप भी जो है वो हूतियों ने उसको घेर लिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो गया था, बाब अल मंडप जो है वो बंद हो गया है। सऊदी और जो हूतीज हैं उनका विवाद जो है वो बढ़ गया है। नाउ यहाँ पर एक मक्का समझौता जो है वो किया गया था रूस और पाकिस्तान की तरफ से, और रूस और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ के द्वारा, लेकिन यहां पर वो समझौता भी ऐसा ढेर होकर गिरा है कि पूछे ही मत। मतलब सऊदी की रिफाइनरीज पर सबसे ज्यादा असर इस वक्त हुआ है। इस वक्त सऊदी जो है वो जल रहा है। सऊदी ने सीधा सीधा कह दिया है कि एक महीने तक कोई भी एक बूंद गैस या तेल जो है मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं, मैं ये सब कुछ बंद कर रहा हूं क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ा हमला जो है वो कर रहे हैं हूती। जी हाँ, रेड सी पर बहुत ज्यादा जो है वो उनका जो है वो विवाद बढ़ गया है। जो है वो रेड सी को पूरी तरह से कब्जा वहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि यू नो व्हाट, हम एक या दो दिन में हुतीस को खत्म कर सकते हैं लेकिन वहां पर लोगों की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो अमेरिका को कह रहे हैं कि आप उन पर हमला करो। जी हाँ, सो ये डबल स्टैंडर्ड जो है वो डिफरेंट है। ऑल्दो उनके पास पूरा हक है कि वो उन पर हमला करके अपनी रक्षा कर सके, लेकिन ये कहना कि हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों की कदर करते हैं लेकिन हम खुद नहीं करेंगे, अमेरिका को करने के लिए कह रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी डील जो है वो सऊदी अरेबिया ने की है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है पिछले कुछ दिनों में जो हुई है। जी हाँ, और ये जो डील है वो 30-40 बिलियन डॉलर की हुई है। जी हाँ, F-35 जेट्स जो है वो लिए गए हैं अमेरिका से, ऐसा कहा जा रहा है। सऊदी अरेबिया ने उनसे ये कह दिया है। जी हाँ, एक और चीज हुई है। जी हाँ, और वो चीज है पाकिस्तान का हमला जो कि अफगानिस्तान पे। जी हाँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है, लेकिन शायद वो इसलिए किया है क्योंकि अब अगर वो ईरान के साथ या हूतियों के साथ इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता सऊदी अरेबिया के साथ, तो उसके पास कोई बहाना होना चाहिए, और वो बहाना ये हो सकता है कि हम तो अफगानिस्तान के साथ बिजी थे भाई, इसीलिए हम तुम्हारे रक्षा करने के लिए नहीं आ सके। नाउ लेट्स गो टू रशिया एंड यूक्रेन। जी हाँ, रशिया और यूक्रेन का विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। अभी तक की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला यूक्रेन ने रशिया की रिफाइनरी पर किया है। मॉस्को जल रहा है। एक दिन में ही 3000 से ज्यादा ड्रोन्स एक्सचेंज हो चुके हैं दोनों कंट्रीज की तरफ से। और यहां पर ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि उनकी बात हुई है ट्रंप के साथ और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। क्या मतलब है इन सभी चीजों का? मतलब यही है कि ये सब के सब लोग चाहते हैं कि शांति जो है अब पूरी तरह से खत्म हो जाए, लोगों को कंट्रोल किया जा सके, लोगों की कमोडिटीज को कंट्रोल किया जा सके, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंट्रोल किया जा सके। द वर्ल्ड लीडर्स आर बिजी डूइंग दैट, बट नोबडी, लिटरली नोबडी इज थिंकिंग अबाउट पीपल, कि लोगों का क्या होगा। ये इन्फ्लेशन रेट से लोगों का क्या होगा, वो अपना खाना तक नहीं खरीद पाएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा। लेकिन उनको अपने ही विवाद पड़े हुए हैं। Nobody is thinking about people. Everybody is thinking about their benefits, but not about their people. That's the harshest truth of right now. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ दुनिया में बहुत कुछ सीरियस चल रहा है, बहुत कुछ आपको ऐसा फील करवा सकता है कि क्या ही है दुनिया, वाई देयर इज सो नेगेटिविटी, कितनी नेगेटिविटी है, क्यों है ये नेगेटिविटी, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। तो चलिए थोड़ा सा लाइट हार्टेड मूड को यहाँ पर बनाते हैं और आपको मिस्टर ट्रंप की एक नई हरकत के बारे में बताते हैं। वेल ऑफकोर्स मिस्टर ट्रंप जो है वो नई नई हरकतें तो करते ही रहते हैं। अभी वो एक स्पीच के दौरान ईरान को मोक कर रहे थे, सुप्रीम लीडर को मोक कर रहे थे, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आता तो कैसे आता उसको मोक कर रहे थे। बट वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट दैट, वी आर गोना टॉक अबाउट जो कि एक बड़ी ही फनी चीज उन्होंने की है ट्रुथ सोशल पर। जी हाँ, सो उन्होंने एक पोल ऑर्गेनाइज किया है। जी हाँ, और वो पोल इसलिए ऑर्गेनाइज किया है कि उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का नाम सही नहीं लगता। उनको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या नाम हुआ, मतलब ये इतनी खतरनाक और सुप्रीम पावर है, इसका नाम कुछ खतरनाक होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ नाम प्रपोज किए हैं और उन्होंने पोल रखा है, लोगों को कहा गया है कि इस पोल में पार्टिसिपेट कीजिए और बताइए कि क्या नाम होना चाहिए AI का। AI का नाम AI नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। तो जो ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं वो कुछ ऐसे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जो AI का नाम जो है उसमें एक SI जो है वो किया जा सकता है, मतलब कि सुपीरियर इंटेलिजेंस, मतलब AI से इसका नाम हटाकर सुपीरियर इंटेलिजेंस जो है वो किया जा सकता है। दैट्स ऑप्शन नंबर वन। इसके अलावा एक है एक्सट्रीम इंटेलिजेंस, मतलब EI भी किया जा सकता है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर टू। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम इंटेलिजेंस जो कि SI, अगेन SI ये भी हो सकता है, मतलब SI के दो मतलब हो सकते हैं, या तो सुपीरियर इंटेलिजेंस या तो सुप्रीम इंटेलिजेंस, और एक हो सकता है एक्सट्रीम इंटेलिजेंस जो कि होगा EI। सो अब वो कह रहे हैं कि लोगों को पार्टिसिपेट कीजिए और मुझे बताइए क्या नाम रखा जाए AI का। जी हाँ, ये है डोनाल्ड ट्रंप का नया काम, मतलब उनको लग रहा है कि दुनिया में कितनी शांति है, अरे कितनी शांति चल रही है, मतलब कितनी मजेदार चल रही है, लोग जो है वो फल फूल रहे हैं, एकदम सब कुछ एकदम सस्ता मिल रहा है, प्रोडक्शन जो है वो इतनी ज्यादा हो रही है, खाना जो है वो भर भर के जो है वो उग रहा है, या ये सारी चीजें हो रही है, तभी तो इनके पास इतना वक्त है कि ये AI का नाम चेंज कर रहे हैं। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि AI का नाम अमेरिकन इंटेलिजेंस भी तो हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है वो नामकरण कर रहे हैं अभी कुछ दिनों से, और वो लेक ओंटारियो को लेक अमेरिका बना रहे हैं, है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बना रहे हैं, जी हाँ, न्यू मैक्सिको को न्यू अमेरिका या आई नो सो ये सारी की सारी चीजें तो वो कर ही रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब वो स्ट्रेट ऑफ अमेरिका बना रहे हैं, तो मुझे लगा कि कहीं AI का नाम वो अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अमेरिकन इंटेलिजेंस करने वाले, पर शुक्र है, जो यहाँ शुक्र है भगवान का कि ऐसा नहीं हुआ, उनके दिमाग में तीन अलग अलग नाम आए हैं बट अमेरिकन इंटेलिजेंस नहीं आया है। शुक्र है किसी ने उनके दिमाग में ये बात डाली भी नहीं है, नहीं तो क्या पता ये बंदा बोलता है कि AI मतलब अमेरिकन इंटेलिजेंस, AI ओनली बिलोंग्स टू अमेरिका, किसी और कंट्री का AI से कोई लेना देना नहीं है, इट्स अमेरिकन इंटेलिजेंस। जी हाँ, मतलब ऐसा पॉसिबल था बट भगवान की कृपा है कि ऐसा से नहीं हुआ, मतलब ही कैन लिटरली डू एनीथिंग। सो ऑफकोर्स ये खतरनाक और तूफानी आइडिया इनके दिमाग में नहीं आया। बाय द वे, क्या नाम आपको पसंद आया है, और क्या आपको भी लगता है कि ये वक्त और बाकी बहुत सारे काम करने का है, लोगों में जो है वो अच्छा खाना पहुंचे, जी हाँ, ये इन्फ्लेशन कम हो, ये जो सारा विवाद, मतलब एक जगह पूरी आग लगा के ये इंसान अब बैठा हुआ है कि AI का नाम चेंज कर देता हूँ, कितना वक्त है मेरे पास, राइट? आई कांट इवन बिलीव कि ये एक प्रेसिडेंट है, वो भी एक कंट्री का, अपेरेंटली वो सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री थी अभी तक, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
5: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ, और वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का। तो तैयार हो जाइए और आ जाइए अपनी फरमाइशों के साथ। नंबर आपके पास ऑलरेडी है, अपना कोई गाना है जो आप फरमाइश करना चाहते हो, जो पुराना हो, तो जल्दी से आ जाइए बिना देर किए। और इसी के साथ यहाँ पर अब जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ वो है खूबसूरत, और खूबसूरत होने के साथ साथ मैं एक और चीज कहूंगी कि वो बहुत ही ज्यादा खास भी है। जी हाँ, उस गाने का नाम है वो है जरा खफा खफा। जी हाँ, और इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए पहला गाना इस गोल्ड इज ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट का मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, जब भी सायरा बानो की बात होती है ना, मैं एक चीज कहूंगी कि उनकी खूबसूरती हमेशा हमें याद रहेगी। मतलब आज भी वो इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं, इतनी ज्यादा ग्रेसफुल हैं, उनके बोलने का तरीका इतना ज्यादा प्यारा है कि आप लिटरली उनके फैन हो जाओगे। आपने बेशक उनकी मूवीज ना देखी हूं, लेकिन अगर आपने उन्हें बोलता हुआ सुन लिया कहीं, तो आप उनके फैन हो जाओगे। जी हाँ, और यही फैनगिरी है जो उन्होंने दिलीप साहब पर भी चला दी थी। लेकिन दिलीप साहब की जो फैनगिरी थी वो उन पर बचपन में ही चली गई थी। जी हाँ, एक दिन एक इंटरव्यूअर ने जब सायरा बानो से पूछा कि क्या कहना चाहेंगी अपनी इस जर्नी के बारे में जो कि आपकी दिलीप साहब के साथ रही, उन्होंने इतने खूबसूरत शब्दों का चयन किया, मैं वो कर भी नहीं पाऊंगी मुझे ऐसा लगता है। द वे शी सेड इट वाज सो ब्यूटिफुल कि मतलब उसके साथ जस्टिस करना जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो कहती हैं कि मैं जब छोटी थी, मैं बचपन में सिर्फ दो ही ख्वाब जो है वो मेरे थे, एक कि मैं अपनी माँ जैसा बहुत ही अच्छी, उनकी तरह उम्दा अभिनेत्री बनूं, जी हाँ उम्दा अदाकारा बनूं, और दूसरी थी कि कैसे ना कैसे मेरा राबता जो है वो दिलीप साहब से हो जाए और दिलीप साहब मुझे मिल जाए। मतलब कैन यू इमेजिन कि एक लड़की जो कि बहुत ही छोटी है और वो इमेजिन करती है कि यू नो व्हाट, दिस पर्सन इज सो हैंडसम, अगर ये मेरा जीवन साथी बन जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। एंड आप इमेजिन कीजिए कि सायरा बानो और दिलीप साहब के बीच का जो डिफरेंस था वो 22 इयर्स का था, 22 साल का था। मतलब अगर आप लॉजिकली सोचे तो इट वॉजंट इवन पॉसिबल, बट फिर भी मैनिफेस्टेशन क्या लेवल की थी सायरा बानो जी की कि उनको वो दोनों ही चीजें मिले। डेफिनेटली वो बहुत ही उम्दा अदाकारा बनी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस वो बनी, अपनी माँ से भी ज्यादा सक्सेसफुल एक्ट्रेस वो बनी। जी हाँ, और दूसरी बात जो उन्होंने की थी कि दिलीप साहब से उनका राबता हो जाए, दिलीप साहब किसी तरह उनके जिंदगी का हिस्सा हो जाए, ये उन्होंने बचपन में सोचा था। एक बचपन में छोटी सी लड़की जो किसी की फैन हो जाती है वो ये सोचती है, कितने सारे लोग कितने सारे बड़े बड़े एक्टर्स के फैन होते हैं लेकिन किसके साथ ऐसा होता है, बट इट वॉज सायरा बानो जिनके साथ सच में ऐसा हुआ। जी हाँ, वो खुद 22 साल की थी जब उन्होंने शादी की, दिलीप साहब 44 के थे, लेकिन उनका प्यार जो है वो अमर रहा, एंड तक अमर रहा। मतलब अगर आपने उन दोनों को साथ में देखा होगा ना, तो आप ये कह सकते हो कि अगर इस दुनिया में प्यार है कहीं तो ऐसा ही दिखता है। ये जो दिलीप साहब और सायरा जी के बीच में इस वक्त नजर आ रहा है, ये जैसे एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं, वो प्यार ऐसा ही दिखता है। जी हाँ, एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

मुझे नहीं पता कि अजनबी बनने की जरूरत क्यों पड़ रही है, लेकिन अगर अजनबी बनने में भलाई है सबकी तो मुझे लगता है इसमें बुराई भी कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ा ही दिलचस्प सा किस्सा है जानी यानी कि राजकुमार और ही मैन ऑफ बॉलीवुड यानी कि धर्मेंद्र के बीच का। जी हाँ, एक पिक्चर के लिए दोनों शूटिंग जो है वो कर रहे थे और वहां पर जानी भी मौजूद थे, धर्मेंद्र भी मौजूद थे। तो धर्मेंद्र जो है वो हमेशा ही बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत ही फनी और ह्यूमरस बातों के लिए फेमस रहे हैं। बहुत ही अच्छे जो है वो शख्सियत उनकी मानी गई है, गुड नेचर्ड पर्सन वो रहे हैं। वहीं अगर दूसरी ओर हम राजकुमार की बात करें तो राजकुमार तो अपने एटीट्यूड, सेविज रिप्लाइज और स्वैग के लिए जाने जाते रहे। तो वहां पर वो दोनों मौजूद थे और धर्मेंद्र को एकदम से कुछ नोकझोंक सूझती है और वो बड़े ही अच्छे से राजकुमार को कहते हैं, जानी आप सारे डायलॉग जब भी बोलते हो, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, धर्मेंद्र कहते हैं, जानी आप जब भी डायलॉग बोलते हो ऐसा लगता है शेर दहाड़ रहा है। जी हाँ, अब सबके सब जो है वो एकदम शांत हो जाता है, माहौल जो है वो शांत हो जाता है, क्योंकि राजकुमार जाने जाते थे इस चीज के लिए कि उनको कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो उल्टे जवाब बहुत ज्यादा दे देते थे। जी हाँ, और वो जल्दी बुरा भी मान जाते थे। तो जब धर्मेंद्र ने कहा कि जानी आप जब भी डायलॉग बोलते हो ऐसा लगता है शेर दहाड़ रहा है, तो सामने से राजकुमार कहते हैं, जानी हम जहां खड़े होते हैं शेर की दहाड़ वहीं से शुरू होती है। बस फिर क्या था, ये सुनते ही पूरा का पूरा सेट जो है वो हंसी मजाक की गूंज में जो है वो खो जाता है। जी हाँ, ऑफकोर्स इस बात को सुनकर जो है वो राजकुमार को अच्छा ही फील हुआ होगा कि मेरे डायलॉग्स की जो कंपैरिजन है वो शेर की दहाड़ से हो रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर इसी जगह कुछ और बोला होता धर्मेंद्र ने, यानी कि ही मैन ऑफ बॉलीवुड ने, तो फिर गड़बड़ हो जाती, फिर राजकुमार कुछ खतरनाक सा रिप्लाई दे सकते थे। लेकिन यहां पर यह भी तो पता चलता है कि धर्मेंद्र किसी को भी आहत करने वाले लोगों में से नहीं थे, वो किसी को भी हर्ट नहीं करते थे, वो हमेशा लोगों को हंसता खेलता हुआ देखने में ही ज्यादा जो है वो खुश रहते थे। ऑन द अदर हैंड राजकुमार, मतलब आप उनकी तारीफ कर रहे हो तो उन्हें अच्छा फील होगा। एक और चीज, राजकुमार के बारे में ऐसी बात कही जाती थी कि जब भी वो कोई बात करते थे, मतलब डायलॉग बोलते थे, तो वो देखते कहीं और थे और बंदा कहीं और होता था, उनके डायलॉग बोलने का यही तरीका था। लेकिन वो रियल में भी कुछ वैसे ही थे, वो सामने देख के बात नहीं करते थे, वो दूसरी तरफ देख के बात करते थे कि इंसान को ऐसा फील हो कि ये इंसान अपने आप को इतना बड़ा मानता है कि हमारी तरफ देखकर बात भी नहीं कर रहा है। इमेजिन द एरोगेंस। जी हाँ, बट या राजकुमार इज द राजकुमार ऑफ बॉलीवुड, आई मीन ही इज द जानी ऑफ द बॉलीवुड। एक और गाना आपके लिए यहां पर मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आज आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जी हाँ, जाने का वक्त हो गया है, जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल यानी कि ट्यूसडे को। तब तक आपको क्या करना है? वेल, वही करना है जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि जब खुद को अच्छा लगेगा तभी तो सामने वालों को भी अच्छा लगवा पाएंगे। जी हाँ, इसीलिए खुद की खुशी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करके किसी और को खुश करने की कोशिश नहीं करनी है। दैट इज द मंत्र फॉर टूडे। दैट्स अबाउट इट। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। और आप सबके लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी गजल एंड में हमारी तरफ से, एंड इट बाय द वे इट इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट गजल्स ऑफ ऑल टाइम। ये मेहदी हसन साहब की गजल है। इसी के साथ मिलते हैं अब आपसे कल। बाय, सी यू, टाटा।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: ऐ मेरी हमराज मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: नमस्कार, आप सुन रही हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन लायंस फाइनल में पहुंचकर छाई। जी हां, AFL यानी ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग के सेमीफाइनल मैच में ब्रिस्बेन लायंस ने हार्थोर्न टीम को बेहद रोमांचक मुकाबले में 9 पॉइंट से हराकर ग्रैंड फाइनल में जगह बना ली है। वहीं लाची नील पर सस्पेंशन का खतरा। जो यहां ग्रैंड फाइनल की खुशी के बीच ब्रिस्बेन लायंस के स्टार खिलाड़ी लाची नील को लेकर चिंता की खबर है। मैच के दौरान हुए एक वाकये की वजह से उन पर एक मैच का सस्पेंशन लग सकता है। वहीं ब्रिस्बेन में क्रिटिकल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस शुरू। ब्रिस्बेन शहर में ऑस्ट्रेलिया IMM क्रिटिकल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस 2026 की शुरुआत हुई। इसमें माइनिंग एक्सपर्ट्स और ग्लोबल लीडर शामिल होकर भविष्य की तकनीक और जिम्मेदार माइनिंग इंडस्ट्री पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं ब्रिस्बेन ट्रैफिक और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपडेट। ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने शहर के प्रमुख रास्तों पर वीकेंड के दौरान ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए नए रोड वर्क प्लान को मंजूरी दी है। यात्रियों को पीक आवर्स के दौरान वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इसके साथ क्वींसलैंड हेल्थ रिव्यू और इप्सविच हॉस्पिटल रिपोर्ट। क्वींसलैंड स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में इप्सविच अस्पताल के मामले में अपनी इंटरनल रिव्यू रिपोर्ट साझा की है। प्रशासन ने हेल्थ केयर सेवाओं की गुणवत्ता और अस्पताल की इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को और बेहतर बनाने का भरोसा दिलाया है। वहीं ब्रिस्बेन के लोकल वेदर में बदलाव। ब्रिस्बेन और आसपास के तटीय इलाकों में इस हफ्ते मौसम खुशनुमा रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार हल्की हवाओं के साथ दिन में खिली धूप रहेगी, जो वीकेंड आउटिंग और स्पोर्ट्स इवेंट के लिए एकदम सही हुई है। इसके साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले LPG सिलेंडर को लेकर नया नियम जारी। अगर घर में LPG गैस सिलेंडर आता है तो यह खबर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भारत की खबर है। सरकार ने LPG सब्सिडी जारी रखने के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। अगर ये प्रोसेस पूरा नहीं होता है तो सिलेंडर तो मिलेगा, लेकिन उस पर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी। इसके साथ त्योहारों के सीजन के लिए 1000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें। जी हां, आने वाले फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए 1000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स चलाने का फैसला किया है। वहीं केरल में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने केरल के 6 जिलों में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश और नदी नालों में उफान के कारण स्थानीय प्रशासन को हर घंटे स्थिति की समीक्षा करने और प्रभावित इलाकों में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई करने की बात कही है, जिसमें पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया गया था। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट को मिले 7 नए जज। जी हां, न्याय व्यवस्था को और तेज बनाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 नए जजों की नियुक्ति की है। वहीं सेना ने लॉन्च की नई साइबर सुरक्षा लैब। भारतीय सेना ने रक्षा उपकरणों और ड्रोन नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 6 नई साइबर लैब स्थापित की हैं। इसके साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले जापान की तरफ बढ़ा भयानक तूफान दुजुआन। जी हां, जापान के तटीय इलाकों की तरफ शक्तिशाली चक्रवाती तूफान दुजुआन तेजी से बढ़ रहा है। मौसम एजेंसी ने टोक्यो और आसपास के इलाकों में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की है। वहीं अमेरिका और चीन के बीच AI तकनीक पर अहम बातचीत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सुरक्षा खतरों और नियमों को लेकर अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट की दावेदारी की पेश। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सीट के लिए देश का अभियान आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। वहीं रियाद में बढ़ते तनाव पर दुनिया की नजर। मिडल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। रियाद के आसपास हुई ताजा सैन्य गतिविधियों के बाद कई उड़ानों पर असर पड़ा है। इसके साथ जर्मनी में चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक हलचल। जर्मनी के दो राज्यों में आए हालिया चुनाव परिणामों में वहां की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। चांसलर और उनकी पार्टी को मिले कम वोटों के बाद सत्ताधारी गठबंधन के अंदर रणनीति में बदलाव की चर्चा चल रही है। इसी के साथ ग्लोबल वेदर सुपर एल नीनो की चेतावनी। दुनिया भर के पर्यावरण विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने आने वाले समय में सुपर एल नीनो प्रभाव के प्रति सचेत रहने को कहा है। ऐसे के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले एशियन गेम्स 2026 शूटिंग में भारत की मेडल हैट्रिक। जापान में चल रहे एशियन गेम 2026 में भारतीय निशानेबाजों ने अपनी चमक बिखेरी है। 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन और टीम इवेंट में हिमांशु ढिल्लों और रुद्रांश पाटिल की अगुवाई में भारतीय टीम ने देश की मेडल तालिका में शानदार बढ़ोतरी की है। वहीं स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने वुमेन्स T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ एशियन गेम्स में मार्शल आर्ट्स का पहला मेडल। एशियन गेम्स में पहली बार शामिल किए गए ट्रेडिशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट में भारत की सुचिका तरियाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। इसी के साथ जापान में तूफान के कारण स्पोर्ट्स इवेंट रीशेड्यूल किए गए हैं। जापान में आए तूफान मौसम के कारण एशियन गेम्स के कई आउटडोर खेलों जैसे घुड़सवारी के इवेंट्स को रीशेड्यूल करना पड़ा है। आयोजकों ने एथलीटों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया है। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store well known for its quality service and reasonable prices.
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

से जो बरसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

अपना साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हाथ दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ

0: तुम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों अलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 31,63,930 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 17 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ SIR ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। उधर रूस विच संसदी चोणां दे आखरी दिन यूक्रेन वल्लों राजधानी मास्को अते इसके आस पास के इलाकियां नूं निशाना बनाते हुए एक वड्डा ड्रोन हमला किया गया। रूसी हवाई रक्षा प्रणाली ने 1600 तों वध ड्रोनां नूं हवा विच मार दिता, जिन्हां विचों 450 ड्रोन सीधे मास्को नूं निशाना बना रहे सन। स्थानक गवर्नर ने कहा है कि इस ड्रोन हमले विच मास्को खेतर दे 2 लोग मारे गए ते 20 लोग जख्मी हो गए। हमले विच मास्को विच एक तेल रिफाइनरी ते एक रिहायशी इमारत नूं भी नुकसान पहुंचा है। उधर ब्रिटेन के टेलफोर्ड विच शुक्रवार शाम एक सिख बस ड्राइवर नाल कथित कुटमार ते उसकी बस चोरी किए जाने का मामला सामने आया। घटना दौरान ड्राइवर नूं बस तो बाहर कढ़ दिता गया, जिस तों बाद बस लैके भज्जे व्यक्ति ने सड़क दे गलत पासे वाहन चलाउंदे होए कई कारां नूं टक्कर मार दित्ती। ब्रिटेन दे वेस्ट मर्सिया पुलिस ने घटना तों बाद 33 साल एक व्यक्ति नूं गिरफ्तार किया। पुलिस मुताबिक ड्राइवर नूं गंभीर सट नहीं लगी ते डाक्टरां ने मौके ते उसका इलाज कर दिता। पुलिस मुताबिक शुक्रवार 18 सितंबर की शाम करीब 6:37 ते मेडली इलाके दी कोट स्ट्रीट ते बस ड्राइवर नाल कुटमार दी सूचना मिली। जांच अनुसार कुटमार दौरान ड्राइवर नूं बस चो बाहर कढ़ दिता गया। इस तो बाद मुलजम बस लैके पार्क वे हुंदे होए हाई स्ट्रीट वल चला गया। इस दौरान वह सड़क के गलत पासे बस चलाउंदा रहा ते कई वाहनों नूं टक्कर मार दी। पुलिस ने मौके ते पहुंच के बस नूं रुकवाया ते एक व्यक्ति नूं गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत विच पुलिस ने उस खिलाफ लुट ते खतरनाक तरीके नाल वाहन चलाउण दे शक विच कार्रवाई की। बाद विच पुलिस ने 19 सितंबर नूं दस्या है कि 33 साल व्यक्ति ते कई होर दोष भी लगाए गए हैं ते उस नूं हिरासत विच लिया गया है। घटना नाल संबंधित प्रसारित वीडियो विच बस ड्राइवर नाल कुटमार किए जाण ते उसकी दाढ़ी खिंचे जाण दा दावा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस दे अधिकारित सूचना विच दाढ़ी खिंचण या घटना दे धार्मिक कारणां दी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इस पहलू नूं पुलिस जांच पूरी होण तक दोष वजो ही देखा जा रहा है। भारतीय मीडिया रिपोर्टां विच वीडियो दे आधार ते इस घटना नूं सिख ड्राइवर ते हमले वजो दस्या जा रहा है। उधर पुणे पेंडू पुलिस ने केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में चार्जशीट में दस्या है कि सीए गोयल और उन्होंने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने कथित तौर उत्ते माही नाम दे एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट की वरतों की। उन्होंने इस अकाउंट राही सीए मंगेतर केतन तीजी बार 18 जून लोगड़ किले उ सद्या। चार्जशीट मुताबिक सीआ चेतन केतन कलासमेट रितेश चेतन के कलासमेट रितेश हांगे ने मिल के फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया से। उन्होंने इस अकाउंट की वरतों केतन नाल चैट करन अते सीए दी दोस्त बन के गल करन लई कीती। तिन्ना ने कथित तौर उते इस अकाउंट की वरतों केतन नूं इह मनाउण लई कीती कि उह सीए दे जन्मदिन तों एक दिन पहला सरप्राइज वजो उसके नाल लोहगढ़ चले। 18 जून नूं केतन की हत्या हुई, 19 जून नूं सीए दा जन्मदिन ऑपरेशन हनीमून तहत रची गई साजिश सी। सीए दा जन्मदिन 19 जून नूं आंदा, 18 जून नूं लोगड़ किले विच एक खड्ड विच डिगण नाल केतन दी मौत हो गई। पुलिस दी जांच विच सामने आया कि यह कोई हादसा नहीं सगो कतल सी। इस मामले विच सीआ चेतन ते रितेश नूं गिरफ्तार किया गया है ते ओ एक इस समय न्यायिक हिरासत विच हन। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ bisoni@bisoni.com। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਬਿਸੋਨੀ 101.1। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
1: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ, ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ।
2: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

हेलो वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुम बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बरसानी 101.1 जी आर जी संदेश अलग दे नाल बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा सोहणा जिहा वेला शुरू हो चुका है जी। इन्हां गल्लां नूं लगाउणा है पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसीं की गाणा है, तुसीं जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ा शुरू कर दो। रेडियो बरसानी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जी, bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आई डी है। जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसीं उह अपनाओ, पर साडे नाल गल्लां बातां जरूर करो क्योंकि सानूं चंगा लगदा तुहाडे नाल गल्लां बातां करनियां। तां चको तुसीं अपना फोन ते साडे नाल गल्लां बातां करो, है ना। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। ते मैं तां आउनी आं, बस हुणे आउनी आं वापिस। उहनां समां तुसीं सुणे जी गीतां नूं इंजॉय भी करो।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101 एम ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड की चकाचौंध तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ साल खेतरी भाषावां विच बनिया कई फिल्मां ने अंतरराष्ट्रीय मंचां ते भारत का नाम रोशन किया है। BFTA कांस वेनिस ते ऑस्कर वर्गे बहुत सारे अवार्ड फंक्शन विच भारतीय फिल्मां ने अपनी स्टोरी टैलिंग संवेदनशीलता नाल दुनिया नूं प्रभावित किया है। तो मैं सोचा कि क्यों ना तुहानूं उन्हां फिल्मां बारे दसा जिन्हां ने विदेश विच खूब वाहवाही वटोरी हैगी है। शायद बहुतियां बारे तो तुहानूं पता होना, बहुतियां बारे नहीं पता होना क्योंकि अदर लैंग्वेज दे विच हैगियां है। तो अदर लैंग्वेज जिहड़ी आउंदी हैगी है तो उस बारे सानूं शॉर्ट मूवीज बारे ज्यादा पता नहीं हुंदा। तो चल मैं तुहानूं दस्सदी हां, जे तुहानूं समझ आउंदी होई तां जरूर देखियो क्योंकि फिल्मां बहुत ज्यादा वधिया है।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा।

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 ते जी आर जे संदेश चालक दे नाल बने हुए हूँ। इन्हां फिल्मां दे विचों जिहड़ियां पूरी दुनिया दे विच छाइया हुई ने तो यह जी लिस्ट मैं फरोल रही हूँ तो इस विच सब तो पहला नाम जिहड़ा आउंदा है वह हैगा बूंग। जी हाँ, ये लक्ष्मी प्रिया देवी दे निर्देशन विच बनी मणिपुरी फिल्म हैगी है बूंग। फिल्म का नाम ते बूंग ने ना हाल ही विच बाफ्टा अवार्ड 2026 विच बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीत के ना इतिहास रच दिता है। फरहान अख्तर ते रितेश सिद्धवानी दे एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म विच एक छोटे मुंडे की कहानी है जो अपने पिता की तलाश विच निकलता है। फिल्म मणिपुर विच जाति तनाव ते सीमा दीआं चुनौतीआं नूं एक बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाउंदी हैगी है जो बहुत वधिया लगती है क्योंकि जेड़ी चीज बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाई जांदी है कि ना वो नो डाउट कमाल दी हुंदी है।

0: ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
1: ਓ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offence vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

हां जी तो वेलकम बैक जी, वेलकम बैक, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.9 ते जी आरजे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए। अगला नाम इस लिस्ट विच जिहड़ा हैगा ओह हैगा जी होमबॉर्न दा। नीरज गायवान वालों निर्देशित फिल्म ईशान खट्ट विशाल जेठवा जानवी कपूर दी हैगी है। तीनों इस लीड फिल्म दे विच लीड रोल दे विच ते मार्टिन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है इसे। ये ना बचपन के दो दोस्तां जिन्हां दे विचों एक मुस्लिम हैगा ते एक दलित समुदाय दे नाल हैगा है, तां उन्हां दी दोस्ती साहत ते जाति राजनीति की कहानी हैगी है। ये भारत की अधिकारित एंट्री सी 88वें ऑस्कर दे लई बेस्ट इंटरनेशनल फीचर दे विच शॉर्टलिस्ट हुई पर नॉमीनेशन नहीं मिलिया। ये धर्मा प्रोडक्शन वालों बनाई गई है, 26 सितंबर नू रिलीज हुई सी।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माई केस।
1: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane,
1: भाई,
0: Queensland.
1: पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
2: तो उमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई. ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: स्टार्ट।
1: हाँ जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी वन सर वन एम ते जी आर छे संदेश चौलक दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे विच। वो फिल्म का नाम है मसान। नीरज गायवान दी डेब्यू फिल्म वाराणसी विच दो कहानियां देवी जिस जो रिचा चड्ढा बने से ते दीपक जो विकी कौशल बने से दी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रोमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उथे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्ढा ते विकी कौशल ने यादगार एक्टिंग की थी है। विकी कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

0: कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: मेनू सारा कुछ मिले सुहाना साहब तो।
1: जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वंसन वन एम ते जी आज संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म है कि ऑल दैट ब्रीथ्स। ए नाम सुन के लगता है कि हॉलीवुड मूवी होनी है बट नो नो नो नो नो नो ए हॉलीवुड मूवी बिल्कुल भी नहीं। ऑल दैट ब्रीथ्स ए इंडियन मूवी है कि शौनक सेन वालों निर्देशित डॉक्यूमेंट्री हैगी है 2023 ऑस्कर के लिए नॉमीनेट हुई सी। 90 मिनट की यह फिल्म दिल्ली के वजीराबाद विच दो भरावां की कहानी है जो जख्मी काली चिलन बचाते हैं। फिल्म ने कांस विच गोल्डन आई अवार्ड ते संडांस विच वर्ल्ड सिनेमा ग्रांड जूरी प्राइज समेत 17 इंटरनेशनल अवार्ड जीते है कि ने। इस 2023 ऑस्कर विच बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर नॉमीनेशन मिले है।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
4: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं। निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: जी देखो, वेड़ा तो हो चुकिया है थोड़े तो इजाजत लैण दा, पर जाण तो पहला थोड़ू कुछ एक होर फिल्म बारे दसना जरूरी सी, तां मैं सोचा वह भी दस ही दिनी आं। तो उस फिल्म का नाम है जी डिसिपलिन जी है, चैतन्य वालों निर्देशित मराठी फिल्म हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आधारित हैगी है। फिल्म वेनिस फिल्म फैसटिवल FIPRESCI अवार्ड मिले हैगा। अल्फोंसो कुआरोन हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक इस दे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से। फिल्म एक संगीत साधक की कलात्मक पूर्णता की तलाश से आधुनिक दुनिया नाल टकरा की कहानी है। बहुत ज्यादा सोहनी है कि यह फिल्म तुसी जरूर देखियो। बाकी मिलते तो असं रहने हों, जुड़ते जरूर है करो तुम साढ़े नाल। रेडियो बिरसोनी 101 FM साडा फेसबुक पेज है जी, बिरसोनी @bersoni.com साडी ईमेल आई डी है। जरिया जेड़ा भी तुसी अपनाउणा चाहुंदे हो अपना लो, पर साडे नाल गल्लबात जरूर करो, है ना। ते बाकी मैं तां इही कहणा है कि अपना बहुत बहुत ख्याल रख्या करो। सत श्री अकाल।
1: What does this fight mean to you to defend your title tomorrow night again?
2: I'm gonna smash your boy. Tomorrow night I'm gonna smash your boy.

0: चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

न बदला में, न बदला।

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। इह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स एंड आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
0: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओमजोर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओमजोर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omzorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओमजोर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं, दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: अमीरों की शादी है तो फंक्शनों की कमी नहीं होगी। वेलकम टू देसी सन डाउनर विथ रंग।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। इह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार
2: सोचो कि ऐसी क्यूट स्माइल देने से मैं मान जाऊंगी।
3: तो तुम्हें मेरी स्माइल क्यूट लगती है।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: रहे बेटा? सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को अभी दो दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: दो दिन, दो साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है, आदत से नहीं।

0: पर साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: ओए सब ठीक ठाक? चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था?

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-23.
2: Jeevan amoolya hai. Is jeevan mein hume jo kuch mila hai, wo sab amoolya hai aur wo sab hume praapt hua hai us upar wale ki kripa aur uski rehmat se. Usi rehmat ko dhanyawad dene ke liye, uska shukriya kehne ke liye, uske liye gratitude dene ke liye apne जीवन आधार के सफर में आज हम और आप फिर से एक साथ आ गए हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं सताक्षी। आज एक बार फिर से, और जीवन एक ऐसा भंवर है जिसे पार कर कृपा और उसकी रहमत से, उसी रहमत को धन्यवाद देने के लिए, उसका शुक्रिया कहने के लिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देने के लिए अपने जीवन आधार के सफर में आज हम और आप फिर से एक साथ आ गए हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं सताक्षी। आज एक बार फिर से, और जीवन एक ऐसा भंवर है जिसे पार करने के लिए एक बेस की एक आधार

उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ, और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए मेरे साथ।

जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रजवाणी 1701 पर और आपके साथ इस सफर में सताक्षी है। धैर्य यानी कि पेशेंस सीखा कई बार है लेकिन समझ हम और आप नहीं पाते हैं, लेकिन धैर्य जो इंसान रखता है, जो इंसान पेशेंस रखता है, वही इंसान जीवन में तरक्की कर पाता है, वही इंसान जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पाता है, पा पाता है जो वो पा सकता है, और वो भी अपनी इच्छा के अनुसार। अगर आप भी अपने मन मुताबिक चीजें पाना चाहते हैं तो धैर्य रखिए। आज बेशक आपके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर धैर्य और मेहनत आप रखेंगे, यानी कर्म अपने अच्छे रखेंगे और पेशेंस रखेंगे, ऊपर वाले पर भरोसा रखेंगे, तो निश्चित तौर से आज ना सही लेकिन आप जीवन में वो सब हासिल कर पाएंगे जो असल में आप डिजर्व करते हैं और आप पाना चाहते हैं। आइए इसी बात पर एक और गीत को यहाँ पर सुनते हैं। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

सुबह के कुछ अमूल्य विचार जीवन आधार में इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसारणी 1701 एम पर। और इन विचारों में आपके साथ सताक्षी भी अपने कुछ विचार घोल रही है और इस सफर को और भी खूबसूरत बना रही है। सुनते रहिए जीवन आधार और यूं ही रहिए मेरे साथ।

डर जाते हैं जब लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। अक्सर हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि अब कैसे ही हम इस जीवन में आगे बढ़ेंगे या हम कैसे कुछ भी जिंदगी में कर पाएंगे। तो देखिए, जिंदगी में घबराइए नहीं, डरिए नहीं, क्योंकि आपके साथ वो खड़ा है जो इस दुनिया में सबसे बड़ा है। याद है ना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हो गए थे और अपनी पूरी सेना को भी कौरवों को दे दिया था, उसके बाद भी जीत पांडवों की हुई। इसलिए जब आपके साथ वो ऊपर वाला खड़ा है तो फिर डर भय किस बात का है। आप जीवन में सही कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और बाकी सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। आइए इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं जीवन के आधार को, यानी कुछ ऐसी बातों को जो आपकी सुबह को भी खास बना रही हैं और सुबह में ऐसा रस घोल रही हैं जो मिठास का रस है, प्रभु भक्ति का रस है, ईश्वर की प्राप्ति का रस है और उस ऊपर वाले पर विश्वास का रस है। इसी रस के साथ, इसी भक्ति रस के साथ आगे बढ़ेंगे। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

सर, लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं कि उनकी हर बात पर आप रिएक्ट करें, श्रोताओं हर बात पर आप बोलें। अक्सर लोग आपको उकसाते भी बहुत हैं, बहुत परेशान करते हैं कि आप बोलें कोई बात हो और फिर लोगों के आगे तमाशा बने। लेकिन ऐसी जगह पर मौन धारण कर लेना, मौन हो जाना, शांत हो जाना, इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। लोगों के तीखे शब्द, तीखे बाण आपको लगते जरूर हैं, लेकिन बस इतनी बात समझने की जरूरत है कि वो आपको इसलिए उकसा रहे हैं ताकि आप पलटकर वार करें, आप अपने शब्दों का वार करें और फिर वो मौन हो जाएं और आप चिल्लाते रहें और वो उसका मजा लें। इसलिए ईश्वर पर कहते हैं ना, कभी कभी चीजें छोड़ देनी चाहिए, और मौन धारण करना ऐसे लोगों के लिए खासकर सबसे बड़ा सबक होता है। आइए इसी सबक के नाम ये अगला गीत सुनते हैं, और सुनते रहिए जीवन आधार आपके

कटाक्षी के साथ जीवन को समझने की एक कोशिश आज एक नई सुबह हम और आप मिलकर कर रहे हैं फिर से जीवन आधार के खास सफर में। इसी सफर में आगे बढ़ेंगे अभी एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए कटाक्षी के साथ।

चुंबक लोहे प्रीति है लोहे लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। रेडियो प्रसानी 1701 एम पर जीवन आधार के सफर में श्रोतागण आप हैं सताक्षी के साथ। चुंबक को देखा है ना, मैग्नेट आयरन से उसकी अजब सी मोहब्बत है, ऐसे चिपकता है उससे कि लोहे को भी उठा लेता है। इसी तरह से हमारे शब्द भी हैं। कितना ही कठोर इंसान हो, कितना ही पत्थर दिल इंसान हो, अगर आप उससे मिठास से बोलते हैं, अगर आप उससे प्यार से बोलते हैं, तो आप उसे अपना मीत बना लेते हैं। हमारे शब्दों में वो ताकत है ना कि हम किसी को जान से मार भी सकते हैं और किसी को काल के ग्रास से छुड़ा भी सकते हैं, किसी को मरने से बचा भी सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, प्यारा बोलिए, ताकि लोग ऐसे जुड़ जाएं जैसे लोहा मैग्नेट से जुड़ जाता है, चुंबक से जुड़ जाता है। आइए इसी बात पर, कबीरदास जी की इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

ये था आज एक और जीवन की आधार का हमारा और आपका साथ जीवन आधार, जिसमें आप सताक्षी के साथ थे। एक ऐसे ही सफर पर कल फिर से आपके साथ चलूंगी, आपके साथ कुछ अनुभव अपने साझा करूंगी और कुछ मॉर्निंग थॉट्स ऐसे आपके लिए लेकर आऊंगी जो आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बनाएंगे और ईश्वरीय शक्ति के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सफर से अब लेते हैं इजाजत। नमस्कार।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो ऑस्ट्रेलिया। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन। प्रोग्राम जानने का सफर शुरू हो चुका है। ट्यूसडे की फ्रेश मॉर्निंग है, कॉफी रेडी है, चाय रेडी है और अगर आप भी ट्रैफिक में हैं दोस्तों तो ऑफिस के लिए निकल रहे हैं अगर और स्कूल ड्रॉप के लिए भी रेडी हो रहे हैं या फिर बस घर पर मॉर्निंग एंजॉय कर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, नया दिन मतलब नई पॉसिबिलिटी और नया एंजॉयमेंट। कल की टेंशन को कल में ही रहने दीजिए, आज का दिन फ्रेश है दोस्तों और आज हम इस दिन को थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा म्यूजिकल और बहुत सारा एंटरटेनिंग बनाएंगे। सो ब्रिस्बेन वॉल्यूम थोड़ा आप कीजिए, स्माइल कीजिए बिकॉज योर मॉर्निंग स्टार्ट्स नाउ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं ये ट्रैक।

वेलकम बैक टू रेडियो प्रिस्वानी में आप सभी सुन रहे हैं जानी का सफर प्रोग्राम। और यहाँ पर अभी आप प्यारा सा गाना सुनकर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी का ये गाना जो है ना वो पूरे दिन को मतलब खुशनुमा बना जरूर देगा, क्योंकि दोस्तों मॉर्निंग में ऐसे ऐसे गीत सुनते हैं जिससे हम जब ड्राइव करते हैं तो वो सफर भी बहुत ही हंसते हंसते और अच्छे से कटता है और पता भी नहीं चलता। और जब दिन की शुरुआत मॉर्निंग की शुरुआत सुंदर और खूबसूरत हो ना तो पूरा दिन खूबसूरत ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो आज बहुत सारी अपडेट्स हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन है, फिल्म में तड़का है, एंटरटेनिंग है, बहुत सारी गॉसिप्स है, करेंगे बात उसके बारे में भी। लेकिन इस गीत के बाद सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी।

इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले करते हैं एक क्विक मॉर्निंग न्यूज चेक। ब्रिस्बेन लायंस के फैन के लिए ये वीक बहुत ही एक्साइटिंग है। AFL ग्रैंड फिनाले सैटरडे यानी कि 26 सितंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ब्रिस्बेन लायंस और फ्रेमेंटल के बीच होगा। ब्रिस्बेन लायंस लास्ट दो प्रीमियरशिप्स जीत चुके हैं और इस बार भी ग्रैंड फिनाले में जो है पहुंच गए हैं। और ग्रैंड फिनाले एंटरटेनमेंट भी म्यूजिक लवर्स के लिए इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, काइले की बात करें तो दोस्तों काइली जो है प्री गेम एंटरटेनमेंट का हिस्सा होंगी। तो ब्रिस्बेन के लायंस फैंस अब तो काउंटडाउन ऑफिशियली ऑन हो ही चुका है। वैसे आप ब्रिस्बेन लायंस सपोर्टर है या फिर फ्रेमेंटल के, बताइए ना, हमें मैसेज करके जरूर बताइए। करेंगे वेट और फिर देखते हैं कौन किसकी साइड है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बेन में। सो ब्रिस्बेन में भाई फेस्टिवल एटमॉस्फेयर भी बना हुआ है आज इवनिंग ब्राइट नाइट्स बाय ANZ ब्रिस्बेन रिवर्स को लाइट्स, वाटर स्क्रीन्स, फाउंटेन्स, लेजर्स और म्यूजिक के स्पेक्टुलर जो शो है उसमें ट्रांसफॉर्म करेगा। और ये ब्रिस्बेन फेस्टिवल का जो पाथ है भाई और साउथ बैंक के फेस्टिवल विलेज एरिया से इसे इंजॉय किया जा सकता है। और इंटरेस्टिंगली अगर बात करें तो साउंड ट्रैक में ब्रिस्बेन म्यूजिक रॉयल्टी द वेरोनिकस भी फीचर्स कर रही है। तो अगर आज इवनिंग का प्लान है ना दोस्तों, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, तो ब्रिस्बेन रिवर के पास एक ब्यूटीफुल इवनिंग का आइडिया बुरा नहीं है, जा सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

इसी के साथ दोस्तों अब टाइम है थोड़ा सा फिल्मी तड़के का। आज एंटरटेनमेंट में एक इंटरेस्टिंग ऑस्ट्रेलियन कनेक्शन है भाई। काइली की बात करें तो एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियन स्पोर्टिंग स्टेज पर स्पॉटलाइट्स में है, क्योंकि वो इस वीकेंड के AFL ग्रैंड फिनाले प्री गेम एंटरटेनमेंट का पार्ट है। तो म्यूजिक लवर्स के लिए भी ग्रैंड फिनाले सिर्फ फुटबॉल नहीं, म्यूजिक प्लस एंटरटेनमेंट प्लस स्पोर्ट का पूरा फुल पैकेज होने वाला है। वैसे काइली का गाना सुनते ही ना डांस करने का तो मन करता ही है, तो प्लीज अगर आपका भी करे ना, स्टीयरिंग व्हील पकड़ के डांस मत करिएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो रिस्वानी।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी और मेरी प्यारी प्यारी ब्रिस्वानी फैमिली, जरा बताइएगा आज सुबह आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं, यानी कि रेडियो ब्रिस्वानी को कहाँ से सुन रहे हैं। ब्रिस्बेन सीबीडी से, साउथ बैंक से, सनी बैंक, लोगान, आईपीएस स्विच, गोल्ड कोस्ट, या फिर भाई ऑस्ट्रेलिया के किसी और कॉर्नर से। और एक और सवाल आपके लिए, परफेक्ट मॉर्निंग क्या होती है वैसे? चाय के साथ ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स, या कॉफी के साथ न्यूज, या फिर पंजाबी बीट्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, या फिर बस आरजे की बक बक बातें। मैसेज कीजिए, हम आपके मैसेज को शो कर पार्ट बनाएंगे। जी हाँ, आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन, आपके साथ जुड़ी हुई है आरजी चांदनी जैन ब्रिस्बेन। अब धीरे धीरे ना हम अपनी मॉर्निंग शो जो जर्नी है उसके एंड की तरफ ना आ ही रहे हैं, लेकिन एक थॉट लेकर जाएंगे। आज जो भी मिले ग्रैटिट्यूड रखिए, जो नहीं मिला उसके लिए पेशेंस रखिए, और जो चाहिए ना उसके लिए एफर्ट जरूर रखिए। लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन हर मॉर्निंग एक फ्रेश बिगनिंग जरूर लेकर आती है। सो स्माइल ब्रिस्बेन, आज का दिन आपका है, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन। आप सभी सुन रहे थे रेडियो ब्रिस्बेन में मॉर्निंग शो चांदनी का सफर। कल फिर मिलेंगे इस वक्त इसी एनर्जी के साथ। अब तक ले कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्बेन। सो वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, हैव अ ब्यूटीफुल ट्यूसडे। रेडियो ब्रिस्बेन दिल से ऑस्ट्रेलिया तक, जी हाँ, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

नमस्कार, मैं सदाक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। दुबई के शासक के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का निधन, 10 दिन के शोक का ऐलान। संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के छोटे भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का निधन हो गया है। शेख मोहम्मद ने इसकी पुष्टि की। उनके निधन पर दुबई में 10 दिन के शोक की घोषणा हुई है। फिलहाल उनकी मौत की वजह सामने नहीं आई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का नया लुक। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपनी इमेज बदलने के लिए क्रू के लिए नई यूनिफॉर्म पेश की है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे जमकर ट्रोल किया जा रहा है। यूजर्स आर्थिक तंगी से जूझ रही एयरलाइंस की वित्तीय मुश्किलों की ओर इशारा कर रहे हैं। ये यूनिफॉर्म तब आई है जब PIA ने अपने बेड़े में 3 नए प्लेन शामिल किए हैं। साथ ही जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए यात्रियों को मिलने वाली छूट खत्म कर दी है और फ्लाइट की संख्या कम कर दी है। एयरलाइन ने ईरान के साथ अमेरिका इजराइल संघर्ष से जुड़ी वैश्विक सप्लाई में रुकावटों के कारण कई इंटरनेशनल रूट भी बंद किए हैं। ईरान से तुरंत निकल जाएं, US ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। अमेरिका ने अपने नागरिकों से ईरान की यात्रा न करने के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि वो किसी भी वजह से ईरान न जाएं और जो लोग पहले से वहां मौजूद हैं वे तुरंत वहां से निकल जाएं। ये कदम पर ही बंद किए हैं। ईरान से तुरंत निकल जाएं, US ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। अमेरिका ने अपने नागरिकों से ईरान की यात्रा न करने के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि वो किसी भी वजह से ईरान न जाएं और जो लोग पहले से वहां मौजूद हैं वे तुरंत वहां से निकल जाएं। ये कदम पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हालात के

घास फूल चिन्ह से वंचित ममता तृणमूल ने नंदीग्राम और रेजी नगर उपचुनाव से पहले नया लोगो जारी किया है। नीली पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों में पार्टी का नया नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस लिखा गया है। लोगो के बीच फुटबॉलर चुनाव चिन्ह है, जिसमें तिरंगे के तीन रंगों की झलक भी दिखाई गई है। चेन्नई सुपर किंग्स ने जहीर खान को बनाया हेड कोच, सीएसके का सोशल मीडिया पोस्ट हुआ वायरल। चेन्नई सुपर किंग्स ने भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को अपना नया हेड कोच बनाया है। जहीर अब स्टीफन फ्लेमिंग की जगह लेंगे, जिन्होंने इसी साल अपने पद से इस्तीफा दिया था। फ्लेमिंग 2009 से सीएसके के साथ जुड़े थे और आईपीएल 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। अब जहीर इस पद को संभालेंगे। उन्हें आईपीएल में पहले भी कोचिंग का लंबा अनुभव रहा है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो चलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए।
1: हो जाए।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
4: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th October 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
3: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
4: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्विदीज फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
5: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 04159526600 04159526600।
6: And we back after that short break.
7: Okay, some important information.
6: Yep.
7: Rheumatism. Rheumatism is a broad term. But for most arthritis conditions, there is no single food that must be completely avoided. But try to limit, okay? Processed meats, fried foods and fast food, cakes and biscuits, sweets and sugary drinks, foods high in saturated or trans fats, excess alcohol, too much salt and highly processed packaged food. कहते हैं कि चूज मोर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन बीन्स, नट्स, ऑलिव ऑयल एंड ऑयली फिश सच एज सार्डिन्स और सैल्मन्स। ओह यस, आई फॉरगॉट, आई गॉट लॉट ऑफ, आई थिंक आई गॉट अबाउट 15 कैन्स ऑफ सार्डिन्स।
6: ओह माय गॉड,
7: अ मैन कैन लिव ऑन सार्डिन अलोन।
6: यू कैन सेल दैट।
7: अ मेडिटेरियन स्टाइल डाइट मे हेल्प कंट्रोल इन्फ्लेमेशन एंड वेट। There is no good evidence that everyone with arthritis must avoid tomatoes. Wow. it affects me. Potatoes, tomatoes, all with O's, eh? Dairy or gluten, unless they personally cause symptoms or a doctor has diagnosed. No good evidence that everyone with arthritis must avoid tomatoes. Wow. It affects me. Potatoes, tomatoes, all with O's, eh? Dairy or gluten, unless they personally cause symptoms or a doctor has diagnosed an intolerance.

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
4: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
5: जी हाँ दोस्तों, वापस आ गए हैं। और हाँ शोभा, we've covered that, thank you. और देखिए दोस्तों, कभी किसी को बददुआ नहीं देना चाहिए ना। आपको याद है ट्रंप ने कहा था स्लीपी जो,
6: yep.
5: बाइडन को स्लीपी जो,
6: yeah, yeah.
5: अब तो ये मीटिंग में भी सो जाता है।
6: रियली
5: ट्रम्प
6: मीटिंग पे
5: स्लीपी जो जो बाइडन, अब तो ये मीटिंग में भी सो जाता है। और उनका बहुत सा प्रॉब्लम में हो सकता है कि जो इन्होंने सब गलत काम किए हैं शायद इनको सोने में मजबूर कर रहा है, दखल दे रहा है। और ये जो एप्स्टीन का भाई 15 साल, कितना बहुत गहरा दोस्ती थी इनमें, क्या क्या हुआ है तो ऊपर आला जाने। और शायद ये भूख रहा होगा अभी। और अभी सुनने में आया है कि उसके पास एक डिवाइस जेब में रखा गया है जो उसका ह्यूमन प्रिंट है, जो साथ साथ में घूमती है नेटली हाप। जब वो जाना सोने लगता है तो कुछ बटन प्रेस करती तो फिर वो जग जाता है। पता नहीं ये कहाँ तक सच है, बट 2-3 जगह पर मैंने देखा ये बात। लेकिन जैसे कर दी वैसे बढ़ दी दोस्तों, ये सब हमारे आँख के सामने एक मूवी है, स्क्रीन हो रहा है। तो एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं। बट यस, वी डिड कवर दैट शोभा, अबाउट द the press about CNN.
6: CNN, yes, yes. And, he banned, yeah. banned the press, yep.
5: For banned, yeah. So I don't know what's going to happen. Okay.
6: I wonder, yeah. All right.
5: टाइम इस समय हो गया है दोस्तों 8:33 और हमारा साथ है 9 तक और अगर आप भी कुछ सुनना चाहें तो प्लीज़ सेंड अस योर रिक्वेस्ट ठीक है ऑलराइट

0: अच्छा जी, अगला जो गीत है, ये गीत एक बार हम दोनों बैठकर सुन रहे थे नित्या भाई के साथ, पंडित नित्यानंद जी, और थोड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ही इज़ नॉट वेरी वेल एट द मोमेंट, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये जो गीत है शायद आपको भी अच्छा लगेगा, गज़ल है, मनडे ने डन जस्टिस टू दिस सॉन्ग। इसमें एक बहुत छोटा सा शब्द है जो बोलता है इन में रे रे, ठीक है, आप सुनिए तो आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। सुनते हैं इस गीत को, रेडियो रेडियो बिजवानी से आप सुन रहे हैं। कम ऑन भाई, मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपन हियर, व्हाई इट्स नॉट प्लेइंग, बट इट शुड प्ले अनलेस वॉल्यूम बहुत कम होगा शायद नाउ। Amy, I don't know why it doesn't want to play at the moment.
1: I don't know.
0: Hold on. Let's see that. Oi. Maybe play something and I'll see what's wrong with it. Okay.
1: Okay. All right. Yep.

0: जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों सिर्फ ये कोई बात नहीं, चलो बाद में बात करेंगे क्योंकि समय बहुत कम हो गया है, अब हमें यहाँ से जाना है। तो चलते हैं दोस्तों। और अमिता,
1: We'll say our
0: इट्स टाइम टू
1: namastes.
0: वाइंड डाउन।
1: Yes, and we will say, have a beautiful day. We'll see you all tomorrow. Namaste.
0: नमस्ते, टेक केयर।

गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अलार्म बज चुका है और सुबह दस्तक दे चुकी है। जी हाँ, और शुरू हो चुका है आपका ब्रेकफास्ट वाला शो। तो मुझे ये बताइए कि कब तक यूं ही सोए रहेंगे? तो भाई उठिए, भले ही देर रात सोए हो, लेकिन सुबह की दस्तक के साथ उठना तो पड़ेगा, वरना आज की सुबह आप पीछे रह जाएंगे और सुबह आगे आगे। और

साथ आपको कदम से कदम मिलाकर खुद आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगर आपकी लेजनेस आगे चली गई ना, तो फिर बॉस क्या होगा आप समझते हैं ना। हाँ, अगर आप ऑफिस जाने वाले हैं तो ढेर सारी डांट पड़ने वाली है आपको, अगर आज कॉलेज जाने वाले हैं तो आपका लेक्चर मिस होने वाला है, अगर स्कूल जाने वाले हैं तो फिर तो भाई बस लेट हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर देर से उठेंगे तो नाश्ते की टेबल पर लेट पहुंचेंगे, आज बड़ा ही लाजवाब और आय हाय क्या खुशबू आ रही है यार, मस्त खुशबू वाला ब्रेकफास्ट बन रहा है, फटाफट से रेडी हो जाइए ताकि टाइम से ब्रेकफास्ट कर पाए। और मैं प्ले करती हूँ आपके लिए अगला ट्रैक, स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रसवानी सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

नाइंसाफी होती है यार मेरे साथ कभी कभी। मैं तो आ जाती हूँ लेकिन आप मुझे ज्वाइन करना भूल जाते हैं। तो भाई खोल लीजिए अपने रेडियो सेट्स, अपने मोबाइल फोन्स पर रेडियो प्रसवानी का एप्लीकेशन, जी हाँ, और हमें सुनना शुरू कीजिए। बॉस, हम आपके दिन को खराब तो नहीं करेंगे, ये वादा है ना। और हाँ, खराब और अच्छे से याद आया, भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए आज का दिन बड़ा ही लाजवाब है। तो भाई सबसे पहले उन्हें विश कर दिया जाए। चलिए, बर्थडे बेबीज, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन। और देखिए, बर्थडे का नाम सुनते ही ना, चाहे किसी भी उम्र का बंदा, उसके चेहरे पर जैसे ही बर्थडे विश मिलती है, एक जबरदस्त मुस्कान आ जाती है। आप पूरे साल बंदे के चेहरे पर स्माइल नहीं देखेंगे, वैसी वाली जो उसके बर्थडे के दिन विश सुनकर आती है। और गिफ्ट लेकर तो आई गजब, मतलब वो मुस्कान को तुम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, वो गजब ही स्माइल होती है। तो हंसिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, आज आपका बर्थडे है। एज का कोई भी नंबर चल रहा हो, एज इज जस्ट अ नंबर बाबू मोशाय। और जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। मस्त रहिए अपनी जिंदगी में, अपने पार्टनर के साथ जीते रहिए। ये डिवोर्स पेवोर्स हमारे लिए नहीं है, हम तो मतलब अपनी जिंदगी में हाथ को मजबूती से थाम के अगर एक छुड़ाना भी चाहे तो भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, क्योंकि भैया 7 जन्मों का वादा है, और 7 जन्म ना सही, 1 जन्म तो पूरा निभाना है ना। 7 तो किसी ने नहीं देखे, लेकिन 7 तो निभाया जा सकता है ना इस जन्म में। और जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। मस्त आज का दिन जीते रहिए और मेरे साथ चलिए अभी इंजॉय कीजिए। आप सबके लिए प्ले कर रही हूँ ये अगला ट्रैक, स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, मेरे साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

इचापन सुन रहे हैं आप सुधाक्षी के साथ दोस्तों रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। और जिन्होंने अभी अभी में ज्वाइन किया है, भाई साहब आप तो शो मतलब आधा तो मिस ही कर देते हैं, ऐसे ये नहीं चल पाएगा भाई। अच्छा कभी कभी मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि इस दुनिया में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। और अब आप पूछेंगे कि क्या रहस्य है, तो देखिए भाई वो रहस्य ये है कि हर इंसान के घर में सुबह के वक्त एक ऐसा ब्लैक होल बनता है जो सिर्फ दो ही चीजों को निकलता है, गाड़ी की चाबी या फिर मैचिंग सॉक्स, है ना। मतलब रात को जो मोजे साथ में रखे थे सुबह एक मोजा गायब हो जाता है, और चाबी वो तो जैसे खुद चलकर किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है। आप सबसे ज्यादा टाइम जो सुबह वेस्ट करते हैं वो अपने सॉक्स को ढूंढने और अपनी चाबी को ढूंढने में वेस्ट करते हैं, और ज्यादातर लोगों के साथ ये होता ही होता है। हम घर का कोना कोना छान मारते हैं, बाद में चाबी कहाँ मिलती है, हमारी अपनी ही पॉकेट में या फिर डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सामने रखी हुई। अच्छा इसके साथ ना एक और भी चीज है मुझे लगता है, और वो चीज क्या है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग ये बात है जिसको मैं आपके साथ बांटूंगी इसी चाबी और मोजों को लेकर। लेकिन अभी फिलहाल एक ट्रैक को मेरे साथ सुनिए और एंजॉय करते रहिए। ठापन साहब सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

यहाँ से दाक्षी के साथ मॉर्निंग शो एंजॉय कर रहे हैं आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस। हाँ तो हम आपसे बात कर रहे थे ना कि कई बार जब आप पूरी दुनिया में चाबी ढूंढ लेते हैं, पूरे घर में ढूंढ लेते हैं, वो आपकी आंखों के सामने ही आपको बाद में दिख जाती है। यू नो कई बार हमारी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं, आप देखेंगे कि हमारा माइंड ना जिस चीज की हमें जरूरत होती है हमारी आंखें उसको देख नहीं पाती है। वो कुछ माइंड का ऐसा है कि वो हमें दिखाता नहीं है। वो चीजें आपके सामने वो चीज रखी रहेगी लेकिन आपको नजर नहीं आती है। लेकिन जब आप अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए उसे डाइवर्ट करते हैं, उस चीज से दूर करते हैं, आप कभी कभी कह देते हैं ना भाड़ में जाए ना मिले कहते हैं ना, हाँ या कोई बात नहीं, नहीं मिल रही ना मिले, देखा जाएगा जो होगा। तो बस थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो चीज जो है वो आपको मिल जाती है। तो यस कभी कभी, और ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है लाइफ के फ्लो का कि कभी कभी जिंदगी को यार छोड़ दो, बहने दो जैसे बह रही है, देखा जाएगा जो होगा, और आपकी जिंदगी ट्रैक पे आनी शुरू हो जाती है। या आपकी चाबी या आपकी खोई हुई कोई भी चीज, कभी कभी रिंग आपकी है ना, और पैसे आपका आपका वॉलेट मिल जाता है। तो यस कभी कभी चीजों को छोड़ देना भी आपके माइंड को एक इंस्ट्रक्शन होता है कि भाई अब हमें नहीं चाहिए, तो वो ढूंढ कर देता है आपको। एक और ट्रैक मेरे साथ एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi for the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: और इट हैपेंस में अभी हम हैं गानों की हैट्रिक में. तो आइए आज के तीन बैक टू बैक ट्रैक्स करते हैं एंजॉय. सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM और ये रहा पहला ट्रैक.

जी हाँ, आप बड़ा इंजॉय करते हैं जब आपको बहुत सारे गाने सुनने को मिलते हैं और सताक्षी कम बोलती है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं इस गाने के उस पार फिर से आपसे ढेरों बातें करूंगी। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रिस्वानी, एंजॉय करते रहिए ठैपन्स और बने रहिए मेरे साथ।

0: डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

करती हूँ आज आपसे 5 मिनट्स रूल या फिर ओवरवेलमिंग टेस्ट की। ओवरवेलमिंग टेस्ट और 5 मिनट्स रूल क्या होता है ये? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप सुबह सुबह घर से निकलते हैं तो आपको 10 तरह के काम याद आ जाते हैं और अपने दिन की शुरुआत में ही आप सोचते हैं कि यार आज तो मुझे ये 10 काम पूरे करने हैं, या 10 काम नहीं, कभी कभी तो 20 काम भी हो जाते हैं। यार अब मतलब लिस्ट हमारे पास रेडी रहती है कि आज तो मुझे ये करना ही करना है, और उसी दबाव में आपकी आधी मॉर्निंग जो है वो आलस में निकल जाती है, क्योंकि उसको सोच कर ही आपको एक अलग सा स्ट्रेस हो जाता है, और इसे ही कहते हैं ओवरवेलमिंग स्टेट, यानी कि वो स्टेट जहां पर आपको हर घंटे के साथ अपने कितने कामों को करना है इस बात को सोच कर ही आपको स्ट्रेस होने लगता है। अब इसको आप एक सिंपल से रूल के साथ खत्म कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं, और वो है 5 मिनट्स रूल। देखिए, जब भी किसी काम को करने का मन ना करे, जैसे वर्कआउट करना, पढ़ाई करना, कमरे की सफाई करना, तो बस खुद से इतना कहिए कि ये काम मैं सिर्फ 5 मिनट्स करूंगी या करूंगा, है ना, सिर्फ 5 मिनट में ये काम करूंगा और उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। यकीन मानिए 90% टाइम आपका दिमाग उस काम में फ्लो बना लेता है, 90% टाइम, और आपका काम पूरा हो जाता है। अपने दिमाग को ना बहुत छोटी छोटी चीजों से हमें ट्रेन करना पड़ता है, और उसके बाद हमारा दिमाग जो है वो उसी रूटीन को फॉलो करने लगता है। तो आज आप जिस भी काम को टाल रहे हैं उसको स्ट्रेस में लाने से अच्छा है कि 5 मिनट्स रूल को फॉलो करके देखिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। आखिरकार इट हैपेंस, लाइफ में ये सब होता रहता है। और कभी ये सोचना कि यार कैसे होगा, या मुझसे नहीं हो रहा, या आज मेरा मन नहीं है, यार बहुत आम सी चीजें हैं, इनको लेकर कोई बहुत बड़ा दबाव खुद पर मत बनाइए कि मेरी जिंदगी में तो प्रेशर ही बढ़ता जा रहा है इन बातों को लेकर, नहीं। ठीक है, ख्याल रखिए, और एक अगले ट्रैक के साथ चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

जय ठापन सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 170 वारेम पर। बात करते हैं उनसे जो सुबह क्या पहना जाए में अपने काफी सुबह के टाइम को वेस्ट कर देते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इंसान की डिसीजन मेकिंग पावर यानी फैसला लेने की जो कैपेसिटी होती है वो मॉर्निंग के वक्त सबसे लिमिटेड होती है। जी हाँ, हमें लगता है कि हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव है लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर जो हमारी है वो मॉर्निंग के वक्त सबसे ज्यादा लिमिटेड, सबसे ज्यादा सीमित हो जाती है और इसे ही डिसीजन फटिंग कहते हैं। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग इसलिए रोज एक ही तरह के कपड़े पहनते थे ताकि दिमाग सुबह सुबह इस बात में ना उलझे कि सुबह क्या पहना जाए और मॉर्निंग में ही ये फालतू के फैसले लेने में आपका ब्रेन थक ना जाए। अब देखिए, स्टीव जॉब्स बनने के लिए मैं आपसे नहीं कह रही हूँ लेकिन एक काम आप जरूर कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, रात को सोने से पहले अगले दिन के कपड़े और बैग को तैयार कर लें ताकि आपके सुबह का जो टाइम इस पर जाता है वो वेस्ट होने से बच जाए। क्योंकि रात को आपका माइंड जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिव मोड में रहता है, आप रिलैक्स हो चुके होते हैं, दिन के काम खत्म हो चुके होते हैं और अगले दिन की तैयारियों में आप उलझे होते हैं कि ये करेंगे या ये प्लानिंग है कल की। उसी बीच में आप अपनी जो है कपड़ों का डिसीजन रात को ही ले लें, सुबह मॉर्निंग में आपका टाइम बच जाएगा, है ना, और वो जो लिमिटेड थिंकिंग पावर का आपका टाइम है वो भी बच जाएगा। एक और ट्रैक मेरे साथ एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए ठापन्स। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 170 वाले

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सओग, स्पेल्ड OMS।